ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलावारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावाड़ू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी

0: को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेब 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए आज का विचार। विषय है साधनों के नियंत्रण से जीवन साधना। वाचक स्वर श्रीमती बी के शिवानी।
2: कभी कभी सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, कोई ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा है, सिर्फ उसको देखकर भी परेशान हो जाते हैं। होता है या नहीं होता ऐसा? थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पे एक कपल आया। वो बहन कहती है, मेरे हस्बैंड जब कोई गाड़ी गलत चलाता है वो गुस्सा नहीं करते, सिर्फ अपशब्द भी बोलते हैं बहुत। और दिल्ली शहर में ज़्यादातर खिड़की बंद रखनी पड़ती है क्योंकि हवा थोड़ी उतनी साफ नहीं है। तो शीशे बंद करके अगर हम किसी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं तो वो सुनाई किसको देता है? सिर्फ खुद को। लेकिन कर करके वो कहा आदत बन गई है। तो उनसे पूछा उस टाइम, भाई साहब आज आप यहाँ से अभी घर जाएंगे, 1.5 घंटे का रास्ता है, क्या आप बिना ऐसा कुछ बोले या चिड़चिड़ किए आप 1.5 घंटा गाड़ी चला के जा सकते हैं? तो कहते हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे ऐसा? क्योंकि उन्होंने गलत किया, तो ये करना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो हम करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर चिड़ चिड़ चिड़ अपशब्द बोलना, गालियाँ भी देना, चिल्लाना, शोर मचाना, हम कर रहे हैं दूसरों की वजह से। लेकिन उसका असर किस पर पड़ रहा है? किस पर पड़ रहा है? आपने गुस्सा किया उनको, तबीयत किसकी खराब होती है? मेरी। आपने गुस्सा किया उनको, आत्मा की शक्ति किसकी कम होती है? मेरी। तो हम सोच रहे हैं हम उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। 2025 में अचानक बहुत सारे लोग जिनको आप जानते होंगे, मैं बहुत सारों को जानती हूँ, जिन्होंने 2025 में अचानक अपने देह का त्याग कर दिया। एक सेकंड में इस दिल ने काम करना बंद कर दिया। अभी अभी ठीक थे, अभी अभी किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे, रात को मुस्कुरा कर गुड नाइट करके सोए थे, लेकिन सुबह नहीं उठे। अचानक सब डॉक्टरों से पूछा गया कि भाई वो तो बिल्कुल हेल्दी थे, वो तो यंग थे, वो तो एक्सरसाइज करते थे, वो तो शाकाहारी भोजन खाते थे, वो और कोई नशा नहीं करते थे, फिर कैसे हो सकता है? तो सब डॉक्टरों ने कहा स्ट्रेस, तनाव। तो तनाव मतलब कोई भी ऐसा संस्कार

0: विचार, स्वभाव, शब्द, बात करने का तरीका, सोच जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जो शक्ति को घटा रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ असर नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ असर कर रहे हैं, वो कहाँ असर कर रहे हैं, वो इस पर असर कर रहे हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति में ये स्पिरिचुअल लॉ है और उसको सबने नोट करके रखना है, संकल्प से सृष्टि बनती है। दोहराएंगे एक बार, क्या लॉ है? संकल्प से सृष्टि बनती है, मतलब यहाँ जो स्थिति है उससे मेरी दुनिया बनती है। हमने उसको ऑपोजिट कर दिया, हमने कहा जैसी मेरी दुनिया वैसी मेरी स्थिति है। मेरी दुनिया मतलब मेरा जीवन, जैसी मेरी दुनिया वैसी मेरी स्थिति नहीं, जैसी मेरी स्थिति वैसी मेरी दुनिया। विज्ञान कहता है सारा दिन में हम कम से कम 70-80 हज़ार संकल्प कर लेते हैं, ये नॉर्मल मन की स्थिति में है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तब तो उसकी गति बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आजकल कई लोगों को रात को नींद भी नहीं आती है क्योंकि मन इतनी फास्ट गति पर चल रहा है कि जब आप लेट भी जाते हैं तब भी वो चलता जाता है, चलता जाता है, नींद नहीं आती है। और जब नींद नहीं आ रही होती है तो हम फ़ोन उठा के देखना शुरू कर देते हैं, और आपको क्या लगता है फ़ोन देखने से गति बढ़ती होगी या गति कम होती होगी? क्या होती होगी? बढ़ती होगी। तो जब आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है आप उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं या आप उसकी स्पीड को कम करते हैं? मन की गति को रात को सोने से पहले क्या करना है? अगर हमें अपनी मन की शक्ति को बढ़ाना है, परमात्मा सिखाते हैं साधन को मालिक बन के उपयोग करो, साधनों का गुलाम नहीं बन जाना है, और साधन के पीछे अपने जीवन की साधना को छोड़ नहीं देना है, नहीं तो वो ही साधन हमारे जीवन में तनाव का कारण बन जाता है।
1: अभी आपने सुना साधनों के नियंत्रण से जीवन साधना विषय पर आज का विचार। वाचिका थी श्रीमती बीके शिवानी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं सुनंदा पटनायक का गाया हुआ ये भक्ति गीत।

अभी आपने सुना अनूप जलोटा का गाया हुआ ये भजन? अगला भक्ति गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

अनूप जलोटा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 और 25 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 24 से दोहा संख्या 247 के चौथे पद तक सस्वर गायन। मुख्य गायन स्वर है सुरेश वाडेकर का।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 8:15 पर आप सुनेंगे ओडिशा के पुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर एक रेडियो रिपोर्ट। इसका प्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे। समय याद रखिएगा, रात 8:15 और शाम 4 आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर, और बाद उसके 10 आप सुन सकते हैं आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम राजस्थान दर्शन। फिल्म संगीत रात 8 और शाम 6:05 पर भी सुन सकते हैं। प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित। समय रहेगा शाम 5:30।

ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण हमारे केंद्र से होगा शाम 7:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत। रात 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1329वां अंक आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र से सुबह 9:30 पर और 10 फिल्म संगीत, 11 सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अलावा इसके 12:40 पर भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। आकाशवाणी जयपुर से सिंधी कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे दिन में 12:10 पर। सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर नीरज दहिया की वार्ता, राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता, समय 8:30। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिलाना चाहिए तो मिलाइए, सुबह के ठीक 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम सुनिए श्रीमती मुक्ता जैन की वार्ता, मोठ की फसल में ध्यान देने योग्य बातें।
1: किसान भाया राम राम। किसान भाया, आज आपा बात करा मोठ ही फसल रे बारे में। पश्चिमी राजस्थान में उगाई जाने वाली दलहनन फसला में मोठ एक प्रमुख फसल हुए है। इनमें सूखा सहन करने की क्षमता अन्य दलहन फसला की अपेक्षा अधिक हुए है। इनकी जड़ा अधि गहराई तक जाकर भूमि में नमी प्राप्त कर लेवे है। राज्य रे पश्चिमी क्षेत्र में मोठ री औसत पैदावार राज्य री कुल पैदावार रा 99% हुए है। मोठ री उपज में उन्नत तकनीका द्वारा खेती करने पर 25-60% तक अधिक पैदावार प्राप्त करी जा सके है। फसल उपज प्राप्त करने में एर भूमि री उर्वरा शक्ति बनाए रखने वास्ते आपा ने उचित फसल चक्र अपनानो चाहिए। वर्षा आधारित क्षेत्र में मोठ बाजरा फसल चक्र उचित रहे है। इन वास्ते आपा ने भूमि री तैयारी करनी है। सबसे पहला मूंग री खेती रे लिए, मूंग एर मोठ री खेती रे वास्ते दोमट एर बालू मिट्टी चोखी हुए है। भूमि ने उचित जल निकासी री उचित व्यवस्था होनी चाहिए है। पहली जुताई मिट्टी पलटन वाले हल या हेरो चलावन करनी चाहिए है। एर फिर एक क्रॉस जुताई हेरो सू एर एक जुताई कल्टीवेटर सू पाटो लगा भूमि आपा ने समतल कर लेनी चाहिए। इनके बाद आपा ने बीज री बुवाई करनी है। तो मोठ री बुवाई 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। देरी सु वर्षा होने पर शीघ्र पक्कण वाली किस्म री बुवाई 30 जुलाई तक करी जा सके है। स्वस्थ एर चोखी गुणवत्ता वाली उपचारित बीज बुवाई में काम लेना चाहिए। बुवाई कतारा में करनी चाहिए। एर कतारा रे बीज दूरी 45 सेंटीमीटर एर पौधा सु पौधा री दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इवर मोठ री फसल वास्ते फसल चक्र भी होना चाहिए। फसल उपज प्राप्त करने वास्ते एर भूमि री उर्वरा शक्ति बनाए रखने वास्ते उचित फसल चक्र अपनानो चाहिए। इनके अलावा खाद्य एर उर्वरक मोठ एर दलहन फसल होने रे कारण इनमें नाइट्रोजन री कम मात्रा री आवश्यकता हुए है। एक हेक्टेयर क्षेत्र में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस री आवश्यकता हुए है। मोठ रे लिए समन्वित पोषक प्रबंधन उचित रवे है। इनवा वासे खेत री तैयारी समय 2.5 टन गोबर या कंपोस्ट री मात्रा भूमि में चोखी प्रकार सु मिला देनी चाहिए। इनरे उपरांत बुवाई रे समय 44 किलो DAP एर 5 किलोग्राम यूरिया भूमि में मिला देनो चाहिए। बुवाई सु पहला 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर रो 1 लीटर पानी या 250 ग्राम गुड़ रे घोल मिलार बीजा ने उपचारित कर छाया में सुखा लेनो चाहिए। मोटरी फसल ने खरपतवार बहुत हानि पहुंचावे है। खरपतवार नियंत्रण रे लिए बाजार में उपलब्ध पेंडी मेथालीन री 3.30 लीटर 500 लीटर पानी में घोल बना प्रति हेक्टर री दर सू समान रूप सू छिड़काव कर देनो चाहिए। फसल जब 20-30 दिन हो जावे तो एक गुड़ाई कस्सी सू कर देनी चाहिए। यदि मजदूर उपलब्ध नहीं हुए तो इन समय एमेजी थाइपर री बाजार में उपलब्ध 750 मिलीलीटर मात्रा प्रति

0: हेक्टर इधर सू 500 लीटर पानी में घोल बनाट छिड़काव कर देनो चाहिए। एर मोटरी फसल में कीट है रोग नियंत्रण वास्ते अपन ने और घना उपाय करना है। इनमें निमन रोग लागे जिया कि दीमक है, पौधा री जड़ काट कर दीमक बहुत ही नुकसान पहुँचावे है, जिसू पौधो कुछ ही दिना में सूख जावे। दीमक री रोकथाम रे वास्ते अंतिम जुताई रे समय क्यूनालफोस या क्लोरोपेरीफोस पाउडर री 20-25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर इधर सू मिट्टी में मिला देनी चाहिए। एर बीज ने बुबाई सुपुर क्लोरोपेरीफोस री 2 मिलीलीटर मात्रा रो प्रति किलो बीज दर सू उपचारित भी कर लेनो चाहिए। कातरो एर कातरा री जिकी लट हुए फसल ने प्रारंभिक अवस्था में पौधा ने काट कर हानि पहुँचावे है। इंडे नियंत्रण रे वास्ते खेत रे चारों तरफ रे क्षेत्र ने साफ कर लेनो चाहिए है। एरी लट रे प्रकोप होने पर मिथाइल पैराथियोन पाउडर री 20-25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर दर सू प्रयोग करनी चाहिए। एक और जिको कीड़ो है वो है जेसी डस। ओ कीट हरे रंगो हुए है और पौधा री पत्तियां ने रस चूस फसल ने नुकसान पहुंचावे है। पत्तियां मूड़ी सी लागन लाग जाए है। कीट रे नियंत्रण रे वास्ते मोनोक्रोटोफास री 0.5 लीटर मात्रा ने 500 लीटर पानी में मिला छिड़काव करनो चाहिए। एमिडो क्लोफिस री 500 मिलीलीटर मात्रा ने 500 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करो जा सके है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी श्रीमती मुक्ता जैन की वार्ता मोठ की फसल में ध्यान देने योग्य बातें। लीजिए सुनिए सतीश देहरा का गाया हुआ ये लोक भजन।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: अस्य मासस्य नवविंशति दिनांक पर्यन्तं निर्धारितम् आसीत्, अधुना आगामी मासस्य अष्टम दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यम् आगामी मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायाम् जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के ढोला मारू चैनल में आपका स्वागत है। और आज की ये शुभ वेला भगवान जगन्नाथ की दिव्य महिमा को समर्पित, समस्त जगत के नाथ। जी हाँ, आज है 16 जुलाई और आज इस दिन भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। साथियों, ये जो आज रथ यात्रा की शुरुआत होती है, ये हमें संदेश देती है कि ईश्वर केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं अपने भक्तों के बीच भगवान आते हैं। यह यात्रा प्रेम और समरसता, सेवा और समानता का अद्भुत उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा अपने रथों पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आइए, इस मंगलमय प्रभात में हम भी अपने मन के द्वार खोलें, श्रद्धा के रथ पर सवार होकर प्रभु के चरणों की ओर बढ़ें और उनके चरणों में वंदन करते हुए यही प्रार्थना करें कि हे जग के नाथ, हमारे जीवन रथ की डोर भी अपने कर कमलों में थामे रखिए, ताकि हमारा हर कदम सत्य, सेवा और सद्भाव की दिशा में बढ़ता रहे।

साथियों, बहुत खुशी का दिन है, खुशी की बात है, लेकिन कई बार अक्सर मन में सवाल उठता है कि ये खुशी आखिर मिलती कहाँ है। कोई इसे बड़ी कामयाबी में ढूंढता है तो कोई महंगी चीज़ों में, लेकिन सच तो ये है कि खुशी बाज़ार में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं, यह हमारे भीतर का एक एहसास है। बहुत सुंदर बात कि ढूंढते रहे हम खुशी को महलों में ताउम्र, और वो चुपके से मुस्कुराकर एक झोंपड़ी से गुजर गई। जी हाँ साथियों, खुशी दरअसल छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। सुबह उठकर चिड़ियों की चहचहाट सुनना, चाय की पहली चुस्की का आनंद लेना, या किसी राह पर चलते अजनबी को देखकर एक छोटी सी मुस्कान देना, यही तो खुशी है। जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमारा दिन, हमारा दिल अपने आप ही शानदार और खुशियों से

भरा हो जाता है। सही बात है दोस्तों, आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। वो एक शेर है ना कि कभी इसका दिल रखा कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। जी हाँ, मुस्कुराना हंसना हमारे खुद के अंदर की बात है, खुद पर निर्भर है। हमने अपने ऊपर चिंताओं और तनाव को इतना हावी कर लिया है कि आज हम जीना ही भूल गए हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, यानी जो पल आज हमारे पास है उसे पूरे दिल से जीना आवश्यक है। हमारे साथी जो रेडियो के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, बस उनके लिए छोटी सी यही बात कि कल क्या होगा साथियों, इसकी चिंता हमें छोड़नी होगी, हमें खुद मुस्कुराना होगा। राह दुश्वार है दूर है मंजिल, हर कदम संभालना होगा। पाँव में चुभा हुआ हर कांटा हमें चलते चलते निकालना होगा।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, सुबह की ताजगी के बीच जब हम खुशियों की बात करते हैं तो फिर हमारे देश की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी ताकत

कि बात कैसे न हो। जी हाँ, और वो ताकत है हमारी युवा शक्ति। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं है बल्कि उन सपनों को सच करने का हौसला और हुनर रखता है। आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं यानी जॉब सीकर नहीं रह गया बल्कि वो नौकरी देने वाला यानी जॉब प्रोवाइडर बन रहा है। आज जब देश में स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति और कौशल विकास ने रोजगार के इतने रास्ते खोल दिए हैं कि युवाओं के पास अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई कमी नहीं रह गई है और सबसे अच्छी बात ये कि अब रोजगार का मतलब सिर्फ पारंपरिक दफ्तरों की नौकरियां नहीं। आज डिजिटल मीडिया, ई कॉमर्स, टेक्निक का क्षेत्र और यहाँ तक कि हमारे स्थानीय और लघु उद्योग में भी बहुत सी अपार संभावनाएं हैं। चाहे खुद का कोई अपना बिजनेस शुरू करना हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कला और हुनर को दिखाने के लिए सामने आना हो, हमारे युवा हर क्षेत्र में अपनी धाक जमा रहे हैं और साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे मुद्रा लोन और बहुत सी हैं इन सपनों को एक नई उड़ान देती दिखती है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कौशल, अपनी पसंद के एक क्षेत्र को पहचानना, उसमें खुद को माहिर बनाना और कभी ना हार मानने वाले जज्बे के साथ आगे बढ़ना। श्रोताओं, आज का ये जो सवेरा है हमारे युवाओं के लिए यही संदेश लेकर आया है कि अपनी ताकत को हम पहचानें, अवसरों की तरफ कदम बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लें, क्योंकि जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक पंक्ति है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।

दोस्तों, बात युवा शक्ति की होती है तो फिर नए अवसरों की बात भी होती है, नई टेक्नोलॉजी की बात होती है। और आज की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने बहुत एक शानदार सा नया ऐसा मोड़ लिया है कि सारी दुनिया हैरान है। जी हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ AI। श्रोताओं, सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन सच मानिए आज हमारे जीवन का एक बेहद हिस्सा

जिन्हें बहुत एक शानदार सा नया ऐसा मोड़ लिया है कि सारी दुनिया हैरान है। जी हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ AI। श्रोताओं, सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन सच मानिए आज हमारे जीवन का एक बेहद हिस्सा महत्वपूर्ण ये बन चुका है AI। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये इंसानी दिमाग की तरह सोचने, समझने और सीखने वाली मशीनी तकनीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे हाथों में जो है, जी हाँ, मोबाइल। ओके गूगल या एलेक्सा करके कोई भी अच्छा सा गाना, मौसम कैसा है, कोई भी सवाल, सब जवाब इससे मिलता है। तो साथियों, लेकिन हमारे युवा या हम सभी इस टेक्निक को सीख रहे हैं और इसमें स्मार्ट बन रहे हैं, तो कई बार इसमें कई लोगों को डर भी लगता है, लेकिन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। AI इंसानों की जगह न ले, लेकिन सच ये है कि इंसानों को हटाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे काम को और आसान बनाने और तेज और बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करें तो सही रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस टेक्निक को सीखें, समझें और इसका सकारात्मक उपयोग करें। तकनीक चाहे कोई भी हो, अगर उसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए तो वो वरदान बन जाती है। आज के आधुनिक बदलते इस दौर में हम समय के साथ चलें तो बेहतर रहता है।

कम से कम सामान रखना, जिंदगी आसान रखना। आज का सुप्रभात कार्यक्रम आपके सेवा में हितेंद्र व्यास ने प्रस्तुत किया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारु चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जसपाल सिंह और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है गीत गाता चल।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है त्रिशूल।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम था प्रेम गीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से सुन रहे हैं। अगला गीत अमित कुमार और साथियों की आवाज में, फिल्म का नाम है तेरी कसम।

ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में। फिल्म का नाम है सिंदूर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी

0: करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदीघोष, ताड़ध्वज और देवविदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
1: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी। ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी।

रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain, and in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 और 16 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सौरभ। आज के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर नीरज दहिया की वार्ता, राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता।
2: साहित्यिक पत्रकारिता के विकास में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान इस रूप में रहा है कि यहाँ न केवल हिंदी वरन राजस्थानी, उर्दू, सिंधी व अन्य भाषाओं की साहित्यिक पत्रकारिताएं भी प्रकाशित हुई हैं। वर्तमान में भी अनेक पत्र पत्रिकाएं राजस्थान के साहित्यिक वातावरण को गतिशील किए हुए हैं। कहा जा सकता है कि राजस्थान के संपादकों पत्रकारों ने इस तथ्य को समझा कि साहित्य की समाज में अहम भूमिका होती है। भारतीय साहित्य में अगर हम विविध विधाओं के विकास और संवर्धन की बात करें तो यहाँ के साहित्य का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं हो सका है। यहाँ के रचनाकारों की दोहरी भूमिका उल्लेखनीय है कि उन्होंने साहित्य लेखन के साथ साथ साहित्यिक पत्रकारिताओं के विषय में भी अनेक कार्य किए हैं, पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है। वैसे तो साहित्यिक पत्रकारिता के मूल में मुख्य आधार यही है कि संगठित होकर प्रयास किया जाए, साहित्य को गतिशील किया जाए। फिर भी कुछ ऐसी सरकारी और गैर सरकारी पत्रिकाएं संस्थाओं के व्यक्तिगत प्रयास से भी प्रकाशित होती रही है, जिनकी सराहना करनी होगी, जिनके अथक प्रयासों से यह परंपरा पोषित होती रही है। अधिकांश पत्रिकाओं में संपादक अवैतनिक अव्यावसायिक रहते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता में स्थितियां भले ही कुछ लाभ की ना रही हों, किंतु यह घर फूंक तमाशा देखने जैसा मिशन है। आज तकनीकी विकास और आधुनिकता के दौर में साहित्यिक पत्रिकाओं की बात करें तो रहीम जी की पंक्तियां स्मरणीय हैं। रहीमन देखी बडेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। राजस्थान की पत्रकारिता के संबंध में संदर्भ में यह बात अधिक प्रासंगिक लगती है। राजस्थान के इतिहास में जाएं तो कहना होगा कि शौर्य वीरता की इस धरती पर राजपूताना रियासतों के समय पत्रकारिता का आगाज हुआ। तत्कालीन समाज में राजनीतिक और सामाजिक चेतना की जागृति हेतु समाचार पत्रों की महती भूमिका रही है। यहाँ की जनता पर राष्ट्रीय समाचार पत्रों का विशेष योगदान रहा। वहीं अजमेर, ब्यावर और जोधपुर, जयपुर में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों जिनमें विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, जयनारायण व्यास, सेठ जमनालाल बजाज आदि नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनका योगदान राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, प्रजा सेवक, अखंड भारत वे आगीवान जैसे पत्रों को प्रकाशित करने में रहा है। साथ ही उन्होंने अनेक रचनाकारों के रूप में कविताओं और आलेखों के माध्यम से जन जागरण, जन चेतना का संचार कर आज़ादी की अलख जगाने में अतुलनीय योगदान दिया है। पुस्तक राजस्थान में जन जागरण एवं पत्रकारिता के लेखक डॉक्टर रामचंद्र उड़ाला अपनी शोध खोज के आधार पर इस बात पर सहमत होते हैं कि राजस्थान में पत्रकारिता का आरंभिक दौर मनोरंजन और सुधारवादी दृष्टिकोण पर आधारित रहा। भारत में जहां पहला समाचार पत्र 1780 में प्रारंभ हुआ, तो राजस्थान में 1949 में भारतपुर के शासक द्वारा हिंदी उर्दू द्विभाषी पत्र मजरूहुल सरूर का आरंभ हुआ। इस मासिक पत्र को राजपूताना का प्रथम पत्र माना जाता है। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र अपनी कृति हिंदी पत्रकारिता में जन जागरण, जातीय चेतना और खड़ी बोली के निर्माण की भूमिका तलाश करते हुए विभिन्न तथ्यों को उजागर करते हैं, किंतु राजस्थान की पहली साहित्यिक पत्रकारिता पत्रिका के विषय में अब भी

खुद खोज जरूरी है। इस दिशा में स्वतंत्र कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज़ादी के बाद प्रांतीय सरकारों ने साहित्य के विकास और उत्थान को ध्यान में रखते हुए अकादमियों की स्थापना की। इसी क्रम में राजस्थान में भी अकादमियां स्थापित हुई। आरंभ में राजस्थान साहित्य अकादमी संगम नाम से वह हिंदी के साथ राजस्थानी भाषा के लिए कार्य करती रही थी। प्रकांतर में राजस्थानी के लिए पृथक से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की स्थापना हुई। वर्तमान में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की मासिक पत्रिका मधुमति इस रूप में सक्रिय है कि मासिक नियमित प्रकाशित हो रही है। सरकारी पत्रिकाओं में स्वरूप और रूपरेखा उसके संपादक और कहना चाहिए अध्यक्ष के बदल जाने पर परिवर्तित होती है। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा जागति ज्योत का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके साथ देश में प्रकाशित होने वाली विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में देखें तो सरकारी ढंग में एक रूपता एक रस्ता को देख सकते हैं, किंतु इसमें कुछ सृजनात्मक और गतिशील प्रयास भी हुए हैं और होते रहे हैं। इससे नए लेखकों को अपनी रचनाओं के बल पर साहित्य परिदृश्य में आने का मौका मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि चेहरों की बजाय काम को देखें और नए काम की प्रयोग की सराहना की जाए। इस विषय का एक पक्ष यह भी है कि साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक पत्रकारिता से जुड़कर पत्रकार कहलाने की इच्छा भी रखते हैं। एक पत्रकार और साहित्यिक पत्रिका के संपादक में अंतर होता है। समाचार पत्रों के पत्रकार साहित्यिक पत्रिकाओं के पत्रकारों की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। ऐसे संपादक पत्रकार सदैव प्रकाशन से जूझते हैं, सीमित साधनों से पत्रिका निकालते हैं। वे रचनाकारों को मानदेय भी नहीं दे पाते। रचनाकार भी अपनी वरीयताओं के रहते इन्हें रचनाएं देकर सहयोग करने का क्रम जारी रखते हैं। कहने को तो अन्य प्रांतों की भांति राजस्थान से भी बहुत सी साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई है अथवा कहें हो रही है, किंतु ये अपने अपने जिले प्रांत की सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ पत्रिकाएं अपनी रचनात्मक पहचान देशव्यापी बनाने में सफल हुई है, वे सार्थक हैं। साहित्यिक पत्रिका के संपादक जो स्वयं लेखक कवि भी होते रहे हैं, उन्होंने पत्रकारिता को एक जरिया बनाने का प्रयास किया है, जिससे वे स्वयं और उनके मित्रों को रचनात्मक ढंग से आकलन में स्थान मिल सके। साहित्य में कुछ लाभ लेने देने के दृष्टिकोण से आरंभ हुई ऐसी पत्रिकाएं प्रकाशनों को कुछ समय बाद विराम भी लगना पड़ा है। कहना होगा कि खरी और सच्ची पत्रिकाएं बहुत कम हैं जिनसे राजस्थान का नाम वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य में गर्व से लिया जा सके। खैर, जैसी भी स्थितियां और हालात रहें, किंतु इन साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं से वातावरण निर्माण और नए लेखकों को मंच देने का कार्य अवश्य हुआ है। भाषा साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में साहित्यिक पत्रिकाओं का अतुलनीय योगदान निर्विवादित है। राजस्थान से अनेक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, समाचार पत्र साहित्य को प्रमुखता देते हुए प्रकाशित करते हैं। परिशिष्ट साहित्यिक लघु पत्रिकाओं के संबंध में कहा जा सकता है कि लहर, बिंदु, वातायन, कृतियोर, पुरोवाक आदि अनेक पत्रिकाओं ने हिंदी जगत में अपनी पहचान बनाई थी। लघु संसाधनों के बावजूद भी इन पत्रिकाओं ने बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचकर साहित्य का दायरा बढ़ाया। वैसे तो राजस्थान से अनेक लघु पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं, हो रही हैं और होंगी भी, किंतु इस दिशा में व्यापक शोध खोज द्वारा नए तथ्य सामने आएंगे। किसी भी पत्रिका अथवा संपादक के कार्य का मूल्यांकन उसके कम या अधिक आधार पर नहीं होकर बस इस दिशा में इस प्रयास और कार्यों की सराहना में होना चाहिए कि उनका योगदान साहित्य के निर्माण में, साहित्य के विकास में, गतिशीलता में, समाज में मूल्य निर्माण में होता रहा है। कहना होगा कि हिंदी भाषी व्यापक समाज में अनेक ऐसी लघु पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। अनेक पत्रिकाओं के बावजूद कुछ और विषय पर कुछ नवीन संसाधनों के साथ ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन होना चाहिए। सैकड़ों लघु पत्रिकाएं छोटी बड़ी कुल मिलाकर एक व्यापक परिदृश्य साहित्य को समाज तक पहुंचाने का कर सकती है। राजस्थान से अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, बंद हो गई।

0: कुछ का स्मरण हम कर सकते हैं, लेकिन जो भी संपादक इस दिशा में सक्रिय हुए उनका निश्चित रूप से ऐतिहासिक महत्व है। वर्तमान समय में नई तकनीक के आधार पर इंटरनेट पर पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, वेब पत्रिकाएं हैं, प्रिंट माध्यम के समक्ष ऑडियो और वीडियो मैगजीन की जो बात हम देख रहे हैं, ये नई संभावना नई चुनौतियों के साथ नए पाठकों को तैयार कर रही है। अनेक दैनिक समाचार नियमित रूप से अथवा साहित्यिक परिशिष्ट के लिए विशेष दिवस निर्धारित करके रचनाकारों को सक्रिय बनाए हुए हैं। इससे निस्संदेह राजस्थान का साहित्यिक परिदृश्य बहुत व्यापक स्तर पर समाज के सामने आ रहा है। इसी के साथ साहित्य के विकास में दूरदर्शन और आकाशवाणी का भी सराहनीय योगदान रहा है। जिस प्रकार साहित्यिक पत्रिका में रचनाएं प्रकाशित होती है, उसी प्रकार इन श्रव्यदृश्य माध्यमों में भी साहित्य को प्रमुखता दी जाती है। निश्चित रूप से साहित्यिक पत्रकारिता का यह आलेख एक आईना भर है। इस विषय में अनेक तथ्य अनेक संभावनाओं को जोड़ा जाना शेष है। मेरा मानना है हमें इस दिशा में चर्चा करनी चाहिए। यह केवल आगाज है, अंजाम आपके विचारों से इसका हो सकेगा।
1: सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरज दहिया की वार्ता, राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई कुछ गजलें।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नई गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

0: ये ढोला मारू चैनल से बोल रही हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य में आज मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन आज ओडिशा के पुरी में। प्रदेश के विभिन्न कृष्ण मंदिरों से भी रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया है। IRCTC ने इस वर्जन में 4 बड़े सुधार किए हैं। पहला, इसमें कठिन कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। साथ ही यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। इसमें टिकट बुकिंग करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट पर यात्रियों की जानकारी सेफ हो जाएगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान होगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि ये परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व की है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, फील्ड में जाकर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने और परियोजना को तय समय सीमा में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समझौते के अनुरूप सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता से पूरा करने और जरूरत के अनुसार पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत और यूके के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता देश की आर्थिक प्रगति का नया अध्याय है। उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस समझौते से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री शेखावत ने कहा कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी साख मजबूत की है और इसी नीति के तहत अनेक देशों के साथ व्यापारिक सहयोग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत कल जयपुर से ब्रिटेन के लिए पहली निर्यात खेप रवाना की गई। ये खेप जयपुर के कनकपुरा स्थित कॉनकोर डिपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। पहली खेप में 4 कंटेनरों के माध्यम से हस्तशिल्प, रत्न आभूषण और औषधि क्षेत्र से जुड़े उत्पाद भेजे गए। जयपुर में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना पर राज्यस्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने योजना की उपयोगिता और MSME क्षेत्र को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि योजना से उद्यमों को कारोबार बढ़ाने, रोजगार सृजन और प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूती मिल रही है।
2: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 लॉन्च किया गया है, ताकि अगर कोई MSME या एविएशन सेक्टर जिसको वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद किसी प्रकार का रीपेमेंट फाइनेंसिंग में, लेबर डिप्लॉयमेंट में या एक्सपोर्ट क्रेडिट्स में कोई दिक्कत आता है तो ये ECGLS में से आप बोरो कर सकते हैं तो राजस्थान में अभी

0: तक 19,000 कंपनीज ने इस क्रेडिट लाइन का फैसिलिटी अवेल किया है। बैंकर्स के साथ विचार विमर्श हुआ जो इस क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में अक्रॉस राजस्थान डिसमिनेट करेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में आज से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 15 जुलाई से शुरू हुए गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग के 5 दिवसीय विशेष अभियान की भी निगरानी की जाएगी। इसके लिए निदेशालय से 15 चिकित्सकों के दल फील्ड में भेजे गए हैं। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की पहचान कर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जयपुर में आज विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार जयपुर में हो रही ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। इसमें सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने, फर्जी एजेंटों से बचाव और प्रवासियों के कल्याण, निवेश और पर्यटन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अजमेर में पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन ने बताया कि महिला ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की है।
2: पूछताछ में बात सामने आई कि अवैध रूप से उसने बांग्लादेश से भारत में पिछले महीने जून में एंट्री की और काम के तलाश में घूमते घूमते जयपुर और फिर ब्यावर और फिर अजमेर में कल अजमेर आना उसने स्वीकार किया और उसे डिटेन किया गया। डिटेन करके सारी चीजें पता की गई, उसको डिटेंशन सेंटर पे भेजा गया है। इसमें विशेष रूप से जो योगदान रहा वो CIDCB की जो टीम है उनका और किशनगंज थाना की टीम का रहा और अभी उससे पूछताछ जारी है। अभी तक जो बात सामने है स्वयं ही जो बॉर्डर है, जो लैंड बॉर्डर है उसी से क्रॉस करके और फिर आगे।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश और विदेश के लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की है कि ये यात्रा सभी के जीवन में श्रद्धा, सेवा, सद्भाव और लोक कल्याण की भावना को और अधिक मजबूत करे। इस अवसर पर प्रदेश के रथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर में जगदीश मंदिर से राजसी वैभव के साथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा में 21 घोड़े, शाही लवाजमा, विभिन्न समाजों की आकर्षक झांकियां, भजन मंडलियां और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। पाली और बारा में भी रथ यात्रा को लेकर लोगों में उल्लास का माहौल है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 में राजस्थान का पवेलियन देश विदेश से आए खरीदारों और आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जयपुर के गुलाबी नगर की थीम पर तैयार इस पवेलियन का प्रवेश द्वार ऐतिहासिक अजमेरी गेट की तर्ज पर बनाया गया है। पवेलियन में बगरू और सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, कोटाडोरिया, बंधेज, लहरिया, हस्तशिल्प, होम फर्निशिंग और रेडीमेड परिधानों सहित राजस्थान के वस्त्र उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। यहां बगरू ब्लॉक प्रिंट और टाई एंड डाई कला का लाइव प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये पवेलियन प्रदेश के वस्त्र उद्योग और शिल्पकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का प्रभावी मंच बन रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य में आज मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा।

0: और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन आज ओडिशा के पुरी में, प्रदेश भर के विभिन्न मंदिरों से भी रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सीमा मिश्रा और सखियों के गाए कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सीमा मिश्रा और सखियों के गाए कुछ लोकगीत।

सीमा मिश्रा और सखियों के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1329वां अंक।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
3: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
3: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
3: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
3: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
3: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
3: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
3: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
3: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
3: जी। श्रोताओ, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओ, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
3: और हाँ श्रोताओ, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
3: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
3: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
3: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
3: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
3: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी
2: जी।
3: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
3: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी।

0: उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
1: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
5: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
6: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
6: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
6: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
6: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
6: जी
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी,
5: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
6: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
3: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
6: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में

0: जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
1: अच्छा
0: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
2: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
0: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहां तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
0: जी,
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण भैया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी,
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
1: जी,
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
1: जी,
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी,
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी,
1: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: चलो अपना अपना पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ। चलो शाबाश। हाँ गोपाल इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी।
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: गुरु जी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: अब बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरु जी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरु जी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो। चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, ठीक से पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर जी।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका

0: बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
1: दीदी।
2: बोलो मालती।
1: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
2: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
1: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
2: ठीक।
1: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
2: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
1: जी।
2: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
1: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
2: हाँ।
0: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
3: नमस्ते दीदी। नमस्ते
4: दीदी।
2: नमस्ते, नमस्ते बच्चों। नमस्ते
5: दीदी। ये,
2: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
6: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
2: अच्छा
7: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
2: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
5: गुलाब।
2: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
3: दीदी मैं बताऊंगी।
2: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
5: गुलाब।
2: हम्म।
5: गेंदा।
2: हाँ।
5: चमेली। और
2: हाँ,
5: चमेली।
2: चमेली।
5: सूरजमुखी।
2: सूरजमुखी, शाबाश।
0: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
2: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
0: जी जी।
2: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
0: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
2: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
0: बहुत अच्छे।
2: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
0: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
2: और मैंने भी तो

0: सीखा इनसे।
1: जी
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है। तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1329वां अंक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मोहित चौहान की आवाज़ में, फिल्म का नाम है नोटबुक।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने को।

0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। मीडिया वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए अजय अतुल का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम है धड़क।

अभी आपने सुना अंकित तिवारी और साथियों का गाए हुए गीत, फिल्म का नाम था आशिकी टू। अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक विलियन से, और इस गीत को गाया है अंकित तिवारी ने।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 11 बज चुके हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

चल चले ए दिल, लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म झील के उस पार से अभी आपने एक गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

हो, फिल्म अक्षय के झरोखों से हेमता और शैलेंद्र के सुर में अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म गाइड से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किशोर कुमार के स्वर में फिल्म अमर प्रेम से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अल्लाह हिम्मत बहादुर हिम्मत है भगवान मरता जा मित्रा सजता करता जा मित्रा किसी से झुकाता चल मित्रा जग पर चार

एक अकेला इस शहर में, भूपेंद्र के स्वर में फिल्म घरौंदा से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म घर से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जुर्म। स्वर है मनहर उदास और साधना सरगम के।

इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं, सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: राष्ट्र सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के
1: मार्ग परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय

0: किसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:05 हो चुके हैं। सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात 10:30 पर आप सुनेंगे स्टूडियो से फिल्म संगीत। 10 बजे जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम राजस्थान दर्शन। रात 9:30 पर स्टूडियो से ही आप सुनेंगे सुगम संगीत में गजलें। रात 9:15 पर सुन पाएंगे आप फिल्म संगीत। 8:15 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा ओडिशा से पुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर बनी रेडियो रिपोर्ट।

8 बजे आप सुनेंगे स्टूडियो से फिल्म संगीत और 8:30 पर आप सुन पाएंगे लोक संगीत। 8:45 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे दिल्ली केंद्र से ही आप सुन पाएंगे न्यूज़ @9।

5:30 पर आप सुनेंगे ढिंगनेरी बातियां, जिसमें भेंटवार्ता होगी पशुओं में टीकाकरण मिथक तथ्य और लाभ डॉक्टर राम कुमार जांगीट से, सहायक आचार्य जो वेटनरी कॉलेज बीकानेर से हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सहभागिता होगी श्री राम साय हर्ष और श्री चंद्रशेखर जोशी की, और प्रस्तुति श्रीमती पुनीत विष्णु और संयोजन अमित सिंह का होगा।

छह बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, 6:05 पर फिल्म संगीत और 6:30 पर जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर जयपुर केंद्र से ही आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। 7 बजे ग्रामीण मित्र सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आज की प्रस्तुति देंगे संदीप कुमार पारिक और मुक्ता जैन, जिसमें चर्चा होगी कृषि व पशुपालन में AI का आगमन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, किसान सम्मान निधि, बकरी तथा भेड़ पालन, सुनेंगे लोकगीत और मौसम की जानकारी।

दोपहर 1:05 पर महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम घर आंगन आज की प्रस्तुति देंगे संतोष चारण और रामा छंगाणी। दोपहर 2:00 दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज। 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर फिल्म संगीत और 4:00 आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संदेश टू सोल्जर्स। 5:05 पर युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति देंगी भवानी छंगाणी।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित संधि कार्यक्रम।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर जे आमेर चैनल जे जरिए मां तां खां मुखातिब आहियां। सभिनी ॿुधंदड़नि खे महेश कुमार कृष्णाणीअ जो प्यार भरियो नमस्कार। सावाइन, असांजे मुल्क में रहंदड़ माण्हू पंहिंजे समाज मूजिबि धर्म मूजिबि ॾिण वार मल्हाईंदा आहिनि। इन ई रीति असांजो सिंधी समाज बि साईं झूलेलाल जे चालीह खे वॾे धाम धूम सां मल्हाईंदो आहे। ऐं इन खां अवल तव्हांखे ॼाण हूंदी साईं टेऊंराम जिन जो चालीहो हींअर हली रहियो आहे, जंहिंजो समापन ईंदड़ आर्तवार ॾींहुं उन्हनि जे जन्मोत्सव ते थींदो। ऐं अॼु 16 जुलाई खां साईं झूलेलाल साहिब जे चालीहे जो शुभारंभ थियो आहे। त अचो ॿुधूं था सतगुरु स्वामी टेऊंराम जिन जी लिखियल हीअ रचना झूलण साईं जी उस्तुतीअ में।

0: टियो आहे सिंधी एकांकी नाटकन जा मुख्य विषय कैंपुन में सिंधियों जी दुखी जिंदगी सिंध जी सार सिंधी लोक कहानियों कौमी भावना राष्ट्रीय मिसैला अंतरजातीय शादियों ए प्यार जा मिसैला वगैरह बखूबी डेखारियल आहिन सिंधी मजमून ए सिंधी जीवन सिंधी अदब जे क्षेत्र में सिंधी मजमून खास करे कोड़ोमल चंदनमल खिलनाणी 1862 में जनानी तैलीम जे मिसले ते पक्को पहु नाले वडो मजमून लिखियाई जेमे खास करे चैन दीवारन में रहंदर सिंधी जालुन के शिक्षा देण ते जोर डिनो अथस इन खां सवाइ प्रोफेसर लाल सिंह अजवाणी तीर्थ वसन जगत आडवाणी बि सिंधी जे अलग अलग विषयन ते अलग अलग मौजुअन ते बेहतरीन मजमून लिखिया आहिनि जिन मां सिंधी जीवन जी साफ झलक नज़र अचे थी प्रोफेसर राम पंजवाणी जो मजमून सिंधी लोक कला जंहिंमें सिंधियुनि जे अलग अलग लोक कथाउनि जो सुहिणे नमूने बयान कयल आहे अदब जे इन्हनि सिंफुनि खां सवाइ सिंधी लोक अदब जंहिंमें सिंधी लोक चवणियूं पिणु शामिल आहिनि जिनमें सिंधियत ऐं सिंधी जो अक्स बखूबी नज़र अचे थो
1: सिंधी अदब में सिंधी जिंदगी हिंयर इन उनवान ते अवी या वार्ता बुधी रहा हुआ वार्ताकार हुआ प्रोफेसर हांसो दादलानी सामाइन हाणे अचो मज़ो माणियो था गीत संगीत जो बुधू था ये गीत आबिदा परवीन जे आवाज़ में

अभी आप सुन रहे थे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम संधि कार्यक्रम। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामरु चैनल से बोल रहे हैं। 12:40 होने को है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मन से उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर हैं विनोद राठौड़ के, फिल्म का नाम है बाजीगर।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म अकेले हम अकेले तुम से भी अपने गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, एक बजने को है, सुनते हैं जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर

0: हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में बदलती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है, जिससे संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री जालंधर भी जाएंगे, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें राजस्थान के भी कुछ स्टेशन शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रभावी कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल शासन सचिवालय में गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित फील्ड दौरे और अपराधों की निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने जिलेवार होने वाले अपराधों में होने वाली बढ़ोतरी और कमी की रिपोर्ट 15 दिनों में प्रस्तुत करने को कहा। राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत पिछले 9 महीनों में 7,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2025 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के गठन के बाद नशे के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। इस दौरान करीब 692 करोड़ रूपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए और 30 अवैध MD ड्रग फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध खेती के विरुद्ध 17 विशेष अभियान चलाए गए। सरकार का कहना है कि AI, मजबूत सूचना तंत्र और विशेष टीमों की मदद से नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। नशे की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता और तस्करी से जुड़ी गोपनीय सूचना के लिए मानस हेल्पलाइन 1933 भी संचालित की जा रही है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में इन दिनों बाघों और अन्य वन्य जीवों की गणना की जा रही है। ये काम फोटो ट्रैप कैमरा पद्धति से किया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार गणना के लिए बाघ परियोजना क्षेत्र में 300 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां 600 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से बाघों और अन्य वन्य जीवों की गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। गणना का उद्देश्य बाघों की संख्या का आकलन करने के साथ साथ उनके आवास और वन्य जीव संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करना भी है। जयपुर में कल रोजगार सहायता शिविर लगाया जाएगा। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से लगाए जाने वाले इस शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के करीब 55 निजी कंपनियां भाग लेंगी और 3,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का प्राथमिक चयन करेंगी। शिविर में निर्माण, होटल, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, ई कॉमर्स, रिटेल और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे चित्रकूट स्थित श्री प्रताप स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिविर में 10वीं 12वीं स्नातक, ITI डिप्लोमा, नर्सिंग और अन्य योग्यताओं वाले अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ भाग ले सकेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। सबसे अधिक 33 मिलीमीटर बारिश श्रीगंगानगर में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 40.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर ही प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। जैसलमेर में 39 डिग्री और बीकानेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। विभाग ने कल जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के 13 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसके साथ ही हमारा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हो चुके हैं। आरंभ होता है महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन सुनने वाली मर प्यारी सी फूटरी सी समूली सखिया ने मां रमा छंगाणी
1: और मैं संतोष चानडा
0: गणा गणा
1: राम राम सा।
0: संतोष अब कार्यक्रम में शुरुआत से पहला आपा बात कर सा आज रे दिन री मोटी बात री और आपा ने सबने ध्यान बेना की अबार चाल रहे असाढ़ महीनो और असाढ़ रे महीने रो चानण पक भी चाल रहे और आज रे दिन री कई मोटी बात होला संतोष
1: कई बात वेला
0: आज रे दिन री सबसे मोटी बात आए संतोष की आज है अपनी जगन्नाथ रथ यात्रा और बेना थाने सबने ध्यान है कि जगन्नाथ रथ यात्रा अपने भारत रो सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मासु एक त्योहार है और उत्सव ओडिशा में पूरी शहर में घनी श्रद्धा और उल्लास मनायो जावे है।
1: अरबेना आ आपनी जी की जगन्नाथ श्री रथ यात्रा है वो खाली एक त्योहार ही नहीं बल्कि श्रद्धा सेवा और समानता रो अनूठो पर्व है।
0: बिल्कुल
1: आपने ऐठे मानता है कि भगवान जगन्नाथ जी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ माए बैठ ने आपरा सगड़ा भक्ता ने आपरा सगड़ा सेवका ने दर्शन दीता हा केवे है कि जटे भक्ति रो दियो जगह है नी तो उठे मंद्रो अंधेरो अपने आप छंट जावे है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो संतोष और वेना देखो रथ यात्रा खाली एक धार्मिक आयोजन ही कोनी बल्कि प्रेम समानता सेवा और भाईचारे रो भी संदेश दिया करे है। भगवान जगन्नाथ सबने एक समान माने हैं और उनारे सानिध्य रे मायने जात पात ऊंच नीच और भेदभाव से ऊपर उठपरार मानवतारी राह पर चलने रुज को संदेश है आ रथ यात्रा आपने इन मायने दिया करे हैं।
1: बिल्कुल और इन साथ ही आ रथ यात्रा आपने सिखावे है कि भगवान खाली मंदिर तक ही सीमित नहीं है वे आपरे हर भक्त के बीच विराजे है और बल्कि इन साथ ही हर कोई प्रेम भक्ति उल्लास सु मिलन आप देखा यहाँ की वो रथ खींचे है।
0: बिल्कुल
1: तो इन यात्रा में जो को मेल मिलाप है भाईचारा है और जो की समरसता रो सुंदर संदेश है वो आपने मिले है।
0: बिल्कुल
1: तो बिना इन साथ आप देखो कि जगन्नाथ जी की यात्रा है आपने मन में प्रेम सेवा विनम्रता और भगवान के प्रति जी को अतुल्य भक्ति जी को भाव हुए तो जगावी है तो जगन्नाथ जी रो नाम ही मन में थावस ही नहीं बल्कि भरोसा ही देवे है।
0: बिल्कुल और संतोष इर मायने एक कहावत आभी है कि भगवान जगन्नाथ रो जिको रथ खींचन वाला होया करे वे कठी न कठी बहुत ही चोखा पुण्य करेड़ा होया करे जिन सुबाजी की डोर बाने हाथ रे मायने आवे है।
1: बिल्कुल तो सबे ना मायारी अंतश्री आही कामना है कि ईश्वर थान सगड़ा रे भी घर आंगन माए सुख समृद्धि और आनंद रो उजास भर देवेला। तो सब इन्हीं भक्ति में चर्चा रे पछे निजर करूं एक भक्ति आधारित ओ भजन।

0: है वो पूछ रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: पग पग सूरा देवली पग पग सतियां थान मंडर फेडग मेलता रंग है राजस्थान। बिना आपनी देव भूमि आपनी मायड भूमि राजस्थान रे माए ओ दुओ सदिया सु हाल तो आ रियो है। इन दोहे माए आपनी मायड भूमि री धरारी साची पिछान नजर आवे है कि मारे अठे हर गांव हर ढाणी और हर डूंगर हाले कोई न कोई भूमिया जूझारन लोक देवी देवता नु वास है। अरा साची बात है कि आपनी साची आस्था आपने हर एक राजस्थान निवासी रे हिये रे माए साची ढूके है कि अठे पग पग सूरारी देवलिया है तो पग पग सतियाना थान है तो आ लोक आस्थारी पहचान ही तो है क्यों रमा बेन।
1: बिल्कुल संतोष, और देखो नी राजस्थान की धरती लोक संस्कृति परंपरा और आस्थारी अमूल्य धरोहर सु भरपूर है। बेना अपनी लोक आस्था केवल अपनी पूजा पाठ तक ही सीमित कोनी बल्कि संतोष आ अपने जीवन जीवने रो ढंग और आपसी प्रेम प्रकृति प्रेम और सामाजिक एकता रो आधार भी बतावे। और संतोष मैं तो क्यों हूँ कि अपने राजस्थान रे मायने रामदेव जी तेजा जी गोगा जी बाबू जी देव नारायण जी करणी माता खाटू श्याम जेड़ा लोक देवता है जिका आज भी अपने लाखों श्रद्धालुओं री आस्था रो केंद्र है।
0: बिल्कुल, और बिना लोक आस्था आध्यात्मिकता रे साथे साथे राजस्थानी संस्कृति ने भी मजबूत बनावे है इनकी मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल,
0: अपना रीति रिवाज वर्त वरोड़िया लोक देवता देवी देवता जिकी परंपरा नु मान है और आपनी जिकी आस्था है तो उवे जद जीवित रेवेला जद ही आपनी मायड़ भूमरी चावी ने ठावी पिछाण गौरव और मिठास अमर रेवेला। तो आज भी आपा देखा हाँ कि आपा सगना रे मन रे माए आज जुगी रमा बेन आज तो देवी रा गुप्त नवरात्रा भी है तो इंडो भी उछो आपा किन भात सु आपा मनावा हाँ आप हिये ने माया की तो गुमेज है शक्ति रे मुजब साची आस्था बनन देखो ढुक्यो है कि आपा किन भात आज आपा उत्साह रजू को महसूस करा। हाँ
1: बिल्कुल संतोष, और देखो बेना अपानी इन लोक आस्था रो प्रकृति रे संरक्षण रो भी घणो सीधो सीधो योगदान है। जिया की देखो संतोष की पीपल है बरगद है खेजड़ी है इन जेड़ा कई जगह वृक्षारियज की पूजा है गाय माता री पूजा है बाणो सम्मान है नदी तालाबा ने पवित्र मानने री परंपरावा है ये सब आपने पर्यावरण ने बचावने रो संदेश तो देवी है। सागेन सागे आज रे दौर में प्रकृति और मानव रे बिचाले संतुलन बना राखण रे मायने भी ये सब मददगार है। और संतोष जद आपा बात करा श्रद्धारी आस्थारी तो आज भी आपा देखा कि आपने परिवार रे मायने संस्कार बड़ारो आदर छोटा सुस्ने और आपसी सहयोग री भावना मजबूत होने रो सबसे मोटो कारण है कि आपने परिवार रे संस्कार रे मायने आस्था जुड़ी है।
0: बिल्कुल,
1: और तो और ए तीज गणगौर दिवाली जेड़ा जिका होली जेड़ा जिका त्योहार है इन त्योहार रे मायने ए सिर्फ खाली त्योहार कोनी बल्कि ए मेल मिलाप खुशी और संस्कृति पहचाने रो प्रतीक है जिनसु आपा सामाजिक रूप सु एक दूसरे सु जुड़ेड़ा। हाँ
0: बिल्कुल, और लोक आस्था रमाबेन लोक संस्कृति जी की अपारी आस्था है जद तई आ जीवित रेवेला जद तई आपनी संस्कृति भी जीवित रेवेला।
1: बिल्कुल,
0: और आपा भी आपा देखा हाँ कि आपनी जी की संस्कृति है आपा किण भांत आपा खुद देखा हाँ आपने बड़ेरा सो सीखा हाँ आगे भी आपा अपने टाबरा ने सिखावा हाँ कि किण भांत आपा अपने आस्था सु जुड़ा हाँ तो आ परंपरा है तो आप

0: पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं बांध हालती रहे है।
1: सही बात। और टाबरा ने भी पतो चाले कि आपा के तरीके की संस्कृति और संस्कार सु जुड़ेड़ा ताकि बाने भी चोखा संस्कार मिले। तो संतोष आपा आगली बात आगे अपनी यही जारी रहेला, पर हालो पहला सुनाओ फूटरो सो लोकगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: संतोष, आज रे दौर में आपा अपनी जिकी आजादी रो सुख भोग रहे हैं, तो ओ सुख अपने यही कोनी मिलियो। ओ सुख अपने कई देशभक्त था, कई देश जिका पुरुष था, महिलावा थी, बाणा कई बलिदान था, बियाना कई त्याग था, जिकारे बलबूते पर ही आज आपा सुख रे नींद ले रिया हाँ, आपा स्वतंत्रता रो आनंद ले रिया हाँ, है नी। और उन बखत रे मायने अगर आप सोचर भी देखा संतोष के किन सारू स्वतंत्रता रे खातर लोग आप रो खुद रो आत्मसम्मान है, खुद री हिम्मत ऐसा बना रखी थी। और देखो बहना, जठा आप बात करा आत्मसम्मान री, हिम्मत री, तो इन दृढ़ निश्चय, हिम्मत और देश प्रेम रिज की मिसाल प्रस्तुत करने वाली एक महिला शक्ति भी स्वतंत्रता सेनानी रे मायने जुड़ी थी। और आज बिहारी जयंती भी है और बिहारो नाम है अरुणा आसिफ अली। तो बहना, आज अरुणा आसिफ अली री जयंती है और आज उनारी जयंती पर संतोष मैं आई बात कहनी चाहूँ कि वह देश री आज़ादी रे खातर आपनो जिको जीवन है वो पूरो समर्पित कर दियो। और वह एक निर्भीक, निडर और एक साहसी महिला थी। और थाने ध्यानी है कि वे आपरी निर्भयता और निडर तारे कारण ही वे स्वतंत्र तारे मायने बढ़ चढ़ हिस्सो लियो।
4: बिल्कुल बहना, अरसन 1942 रे भारत छोड़ो आंदोलन रे माए इनारो योगदान हो बो घणो ही महत्वपूर्ण रियो हो। अंग्रेज सरकार के कड़े विरोध रे बावजूद भी उनारी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि उवे घणे ही उत्साह और जोश रे हाथ है आपरे लक्ष्य ने साधता रिया हा। बिना अरुणा आसिफ अली जी मुंबई रे ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगो फहरायो हो, जको आजादी रे आंदोलन रो प्रेरणादायक प्रतीक मान्यो गयो। इारे प्रत्येक कार्य और उन बखत देखा कि पूरे देश भर में जिका अपना युवा हा उहा भी आजादी रे खातर संघर्ष करियो हो और उमारी प्रेरणा सु उहा में जोश आयो हो।
3: बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हो संतोष। और देखो न बेना कि अरुणा आसिफ अली ए इसी महिला थी जिको आपरो लक्ष्य मिलने बाद रे मायने भी रुकी गानी। और आप देखा यहाँ कि कई इंसान ऐसा होया करे संतोष की जिको लक्ष्य मिलने बाद रे मायने एक उम्र तया क्या रुक जाया करे, पण ए आपरी हिम्मत और लगन और

0: ने और भी ऊर्जावान बने हो और भी ऊर्जा रे साथ ही निरंतर आगे बढ़ती रही। और देखो नी संतोष की आजादी रे बाद रे मायने भी है, समाज सेवा है, शिक्षा है, लोकतांत्रिक मूल्य ने मजबूत बनाने रे मायने जुटेड़ी रही। और आनो पूरो जीवन त्याग, साहस, देशभक्ति और नारी शक्ति रो एक जीवंत उदाहरण है।
1: बिल्कुल। और बिनो अरुणा आसिफ अली जी री आज आपा जयंती मनावा हा और उणा रे आदर्शा पर चालने री और देश प्रेम रे साथे साथे ईमानदारी और सामाजिक सेवा रे साथे राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय भक्ति रे साथे आपा ने जी की नागरिकता है उन्होंने सरोकार करने रो आपा संकल्प लेवा हा।
0: बिल्कुल।
1: रमा बेन आपा देखा है कि आपने अठे चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो चाहे वीर शूरवीर योद्धा हो तो आपनी भारत भूमि में आपनी राजस्थान भूमि में कितना ही जन्म लिया है तो धन भाग है भारत भूमि रा जठे तलवारारी धार सु लिखोड़ा इतिहास हो या फांसी रा फंदा ने हंसता हंसता गले में लगाने वाला क्रांतिकारी गाथा आपा देखा यहाँ की अठे गाय जय है।
0: बिल्कुल।
1: तो ए सूरमा ए स्वतंत्रता सेनानी अठे जन्म लीदा हा जका आपरी मायड भूमरे कायदे और स्वाभिमान सारू आपरा बलिदान दीदा हा।
0: बिल्कुल।
1: तो इना जुझारू सपूताने और सपूतावा ने आपा नमन करा हा और इना ने प्रणाम करा हा।
0: बिल्कुल संतोष। और देखो सही मायने में तो आपने बेना आज जिको आप संकल्प ले रिया हा अने नमन कर रिया हा तो आपने जिके आ जयंती मना रिया इरे मायने अगर आपने सच्ची श्रद्धांजलि देवनी है तो निश्चित रूप से आपने इरा जिका मूल्य है इरा नैतिक जिका नियम है बाने अपनाने सु ही आने सच्ची श्रद्धांजलि मिलेला। और जठे आने आदर्श है तो भी आदर्श आने बे आदर्श जिका है आपने प्रेरणा देवे कि भी प्रेरणा सु ही आपा निरंतर आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से सफलता है बापा ने मिलेला।
1: बिल्कुल मिलेला। तो सबे ना आपने भारत रा आपने राजस्थान वीर सपूता और सपूतावा ने नमन करा और हाला सुनावा छो सो गीत।

0: संतोष कार्यक्रम है अपनो घर आंगन यानी महिला वारो कार्यक्रम है नी। और महिला वारी जब बात चले तो बाने फुटरा फेरी बात नहीं है तो कठे न कठे बातें अधूरी यानी कि श्रृंगार री बात तो होनी चाहिए,
1: जरूरी है।
0: और थाने सब ने ध्यान है संतोष की महिला वारी श्रृंगार री जद बात हुए तो यारे मायने बाल और जो स्थान है वो सबसे पहले आया था।
1: बिल्कुल है।
0: क्योंकि जी अगर कोई लुगाई रा बाल सुंदर है नी तो बा किसी भी हो पर बा बहुत फुटरी लग गए यानी कि एक लुगाई री बाला री जी की सुंदरता होया करे बापी रे हर तरह रे रूप में सवार दिया करे है। और
1: लेकिन रमा बेन जिया थे कि यो है कि महिलावा में जी की सुंदरता हुआ बाणा रो भी अहम रोल हुआ करे, सुंदरता रे निखार दिया करे। पर आजकल हमूमन यानी कि लगोटो के हर अपनी बहना मापा देखा हाँ और ग्रामीण परिवेश में अपनी बहना में ज्यादातर घणक रिया चीज दिखने मिले है कि उन्होंने बाणा जी की जड़न जी की समस्या नहीं ए घणक री देखने मिले है कि हमारा बाल जड़े है, बाल टूट गया तो आज की समस्या आ क्यों हुआ की कर हुआ।
0: देखो संतोष कई तरह की कमियां होया करे जिन सारू बाल एज का झड़न लाग जाया करे, समय पहला सफेद हो जाया करे। और एज की समस्याएं बिना जिया की देखो बदलती जीवन शैली है, तनाव है, पोषण की कमी है, हार्मोन और मायने बदलाव है, बीमारियां हैं या दवाओं रो असर है, सब जिका चीज होया करे मिल परारी बाहरी जड़ा रे ऊपर असर क्रिया करे। और इन सारू ही बाल एज का झड़न लाग जाया करे, समय पहला एज का सफेद हो जाया करे और कठिन कठी बाल एज का रुखा भी हो जाया करे।
1: तो बिना साथे अपन ये बात तो ध्यान देना घणो ही जरूरी है कि जे अपना बाल झड़े है तो आपा की कर ध्यान रखा कि बाल ने स्वस्थ रखन सारू सबु पहला तो आपा ने संतुलित भोजन है उवे घणो घणो जरूरी है। और भोजन में आपा कई लेवल कि हरी सब्जियां, फल, दूध, दाल और आपने तो ग्रामीण परिवेश में आपा पशुधन राख्या करा हाँ तो आपने दूध दही घी कोई कमी तो है
0: और शुद्ध भी मिले।
1: हाँ बिल्कुल। और आपने खेती ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां और आजकल तो गांव में भी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां घणकरी मिलिया करे है। तो ए जिकी पौष्टिक आहार है, संतुलित आहार है और जे कोई अंडा इत्यादि खावे है तो वे भी ले सके है।
0: बिल्कुल।
1: और इंडे हाथी आपा देखा कि बाजरो, ज्वार और प्रोटीन युक्त जिकी चीजा है तो उन्होंने भी आपा शामिल करा। इंडे अलावा प्राप्त पानी पीणो, आपा ने आची नींद लेनी ओ घणो ही जरूरी है।
0: आ सबसे मोटी बात है संतोष, क्योंकि कई बार महिलाओं जी की होया करे बे घर परिवार मायने इन सारू उलझ जावे कि चोखी तरह की सु पानी पीणो तो छोड़ो नींद लेवनी भी भूल जाए करे, यानी कि बेरे रातियारी नींद ही उड़ जाए करे। और कई बार तो इया होया करे संतोष की मारो पति देव भी मार काम करते करते बीच में उन्हें एक गिलास पानी ला देवे के लिए पानी पी ले तो पानी पीणो भूल गई होवेला। तो इन सारू कई महिलाओं होया करे जिकी काम करते करते बेड़ा पानी पीणो भूल जाए करे।
1: सही बात।
0: तो कठे कठे ओ भी कारण होया करे कि बाल है जिका अपना शुष्क हो जाए करे, झड़न लाग जाए करे। तो बिना बाला में अगर थाने चोखो पोषण देवनो है तो सबसे पहला ओई नियम अपनानो है कि थाने भरपूर पानी पीणो है और बिंडे अलावा चोखी नींद लेवनी है।
1: और इन्हें साथे साथे बेना देखो कि अपन जाने हाँ कि आपने अठे काम तो घणकरो है ही, बाखर बुआरी रो काम है, गाय दुवारी रो काम है, कच्चा घर है तो गाबर गोबर निपड़ रो भी काम है। आप देखा कि आपने ग्रामीण परिवेश में एक लुगाई दिनों गेहूं लेर आथना तक लागड़ी रहे है तो आपने वो देखना है कि आपना जी का बाल झड़े है तो इन्हों ने आप प्रदूषण सु, धूल मिट्टी सु और चूल्हारे धुआं किकर बचा सकाला तो माथे ने ढक्कर रखा, धूल मिट्टी है काम तो आपने करना ही है वो आप की कर छोड़ सका हाँ।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आप बचाव कर सका हाँ कि आप प्रदूषण सु की कर बच सका, आपने बाड़ा ने की कर बचा सका हाँ तो बाड़ा ने ढक कर रखो, धुएं सु, धूल मिट्टी सु और आछी साफ सफी रखा बाड़ा री और बाल सूखे पचवी आप उनमें तेल या घीरी मालिश करें।
0: बिल्कुल। और बखत बखत पर बाड़ा ने बाड़ा रे जी की साफ सफाई बीरो भी ध्यान रखा। और कई बार संतोष आपा देखा कि बाड़ा रे मायने कहीं आपा बोरलो पैरा, जाली पैरा, आटलियो पैरा तो बारे भी साफ सफाई आपने पूरी तरीके से रखनी चाहिए ताकि बाड़ा रे मायने मैल नहीं जमे।
1: बिल्कुल।
0: और इन सारू बहना अगर बाल थाना अच्छा है और बाने और अच्छा बनाना है, चोखा बनाना है तो इन सारू बाड़ा रे मायने थे दही है, छाछ है या जैतून रो तेल है या फिर अरंडी रो तेल है, तिल्ली रो तेल है, इन तरीके रज का तेल है या दही छाछ लगार पर थे बाड़ा ने और भी

0: आपने सुन रही थी अपना विशेष कार्यक्रम घर आंगन। आज की प्रस्तुति दे रही थी रमा छंगाणी और संतोष चारण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दो बज चुके हैं, सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on the same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open Badminton Tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. National

0: बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस नेशन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% of the world population.
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम ये समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमरिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
4: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वॉरफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर

0: तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनों के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध

तीर्थ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधान

0: द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसने उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6वीं कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 मिनट हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

हेट स्टोरी 3 से अरमान मलिक और नीति मोहन के स्वर में अभी आपने ये सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

मलिक और श्रद्धा कपूर के स्वर में फिल्म बागी से अभी आपने की सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है गदर 2। स्वर है विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर के।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम में 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के डोला मरु चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारे प्रथम प्रसारण के ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होते हैं। 4 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 4 बजने को है, इस अवसर में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सबसे पहले दिल्ली केंद्र से प्रसारित संदेश टू सोल्जर्स।

ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंग ला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित करने के लिए किसानों के बीच

0: वंदन वंदन अभिनंदन नमस्कार सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर एक ऐसे सिपाही से जिसने अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है प्यारी सी मुस्कान है वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी है सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति अत्यंत गौरवशाली रही होंगे। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को इस यात्रा वृत्तांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो को अपने पल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो कि एफएम रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है। मैं अपने गांव से रामपुर बांगल से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जयगढ़ के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे पापा जी जो है एक किसान है, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई दो बहनें हैं और मेरी पत्नी दो बच्चे।
0: वाह क्या बात है, सच में आपका जीवन बहुत ज्यादा सरल है। पर यही कहूंगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म में है वो सर्वोपरि है और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई। आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए।
1: मैं बताना चाहूंगा, मेरे गाँव में पुराने समय से ही काफी फौजी, छोटा सा गांव है पर फौज में काफी जो मात्रा में जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, दो ताऊ जी और मेरे जो ताऊ जी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम पांच भाई हैं। पांचों में से चार जो है अपने जो फौज में है। मैम
0: क्या बात है, तो कहीं ना कहीं वो परिवेश

0: था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए रास्ता कौन सा है।
1: जी मैम बिल्कुल, ये जो मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से, उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो ये जो कैमोफ्लेज वर्दी पहन के आते हैं जो ये पेन और देश की सेवा करूं।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे और उन किस्से कहानियों में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
1: जी मैम, मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है, तो पाकिस्तान के किस्से कहानियां सुनाया करते थे काफी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती है, काफी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
0: जी बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनते थे तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसे होता था आपके साथ?
1: जी मैम, जैसे मैं किस्से कहानियां सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
0: वाह क्या बात है। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
1: जी मैम, मेरी उम्र जो है मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था फिजिकल, मेरा पहले से ही टफ था मैम, मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
0: जी, तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए।
1: जी मैम,
0: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
1: मैम मैं जैसे किससे कहानी सुनता था तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है, तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पर जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सिलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आप के ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी आपके बाबा सब फौज में रहे, लेकिन आप 4 भाई बहन इनमें से कोई फौज में नहीं था। पिताजी खुद जो है पूरे देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है, वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे जीवन का आधारभूत स्तंभ है, तो वो वहां मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए देश के प्रति। तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहाँ अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
1: मैम मेरे परिवार में से किसी न किसी घर में से 2 या 3, किसी के 2 लड़के, 2 भी भर्ती उसी में सेना में, 3 ही 3 में, सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम मेरे पापा जी को जो ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गांव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा,
0: क्या
1: देश से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊंगा।
0: वह क्या बात है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना फैमिली सिस्टम से, खास बात यही है। जिस तरह से बेटियों को जो ब्याह जाता है कहा जाता है कि जो जहां तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि वापस लौट कर मत आना, लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल कितनी मुश्किल थी?
1: मैडम मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को, तो मेरी ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन गिटोर में करी थी 15 दिसंबर 2005 को। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीनातोली उत्तराखंड में हुई मैम, तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
0: क्या बात है। और जो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक

0: सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है. हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं. तो जो 20 सालों का जो समय रहा है जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको.
1: मैम, बचपन के पल वापस तो नहीं आते, पर बहुत यादें जुड़ी रहती हैं और काफी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूंगा, मेरी यादें काफी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं.
0: वाह क्या बात है. निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की सोच सिर्फ देश प्रेम है ना
1: जी मैम.
0: और हमेशा जहन में चलता रहता हूँ कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना है. तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सहस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियां आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे.

आप सभी का पुनः स्वागत है आज की इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है। तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से, और सुखद

0: व्यक्ति का जरूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए, जिसकी वो कामना करता है, क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भगेंद्र जी, क्यों सच कहा ना। और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियां, जिससे जुड़ी हुई कहानियां आप बचपन से सुनते आ रहे थे। जी, आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन बीरपुर बिहार में हुई, उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डीजी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम में रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनएजी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनएजी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया, 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताएं, क्योंकि आपको तो जैसा कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेट लिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, तो ये साथ साथ आप करते रहे और कितना समय निकाल पाते?
1: मैं जो जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था, तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया। कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया, तो मैंने अपनी एसएसपी में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफर यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे जरूर जो आपके साथी होंगे और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
1: हाँ मैम, काफी लोग मेरे जो मित्र हैं बल्कि काफी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं, बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते, और बोलते हैं और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा वो लोग जो सीमा में यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहाँ जुड़ने से पहले वो साथी, वो भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे, कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज खुद सेनाओं में हैं, कुछ खुद फौज में हैं, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या सा समा था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
1: मैम ज्यादातर जो है हमारे गाँव में से काफी लोग होते हैं, लास्ट में जैसे कि मैं बताना चाहूंगा सभी भर्ती हो लेते, लास्ट में मैं हुआ था, तो जितने भी तैयारी करते थे ज्यादातर लोग सेना में भर्ती हो गए और कुछ थे जो हमारे साथी थे जो कि नहीं हो पाए, जैसे कि मेरा एक मित्र था योगेश शर्मा, वो जो है कोशिश भी किया पर भर्ती नहीं हो पाया,
0: तो उनके मन में मलाल रहा होगा कि काश हम भी तुम जैसे बन पाते, काश।
1: हाँ मैडम बिल्कुल बोलते ही।
0: अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे ये बोलते होंगे कि तुम्हारी वजह से हम आज वहां हैं, हम भी आज सेना का हिस्सा हैं, हम भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ प्रेरणा मिली?
1: मैं ऐसा साथ में बोलते थे कि क्यों हमारे जो साथी थे जो हमारे साथ दौड़ते भागते थे वो एक दूसरे का एहसान जरूर मानते, और कुछ हमारे जो सीनियर थे जो फौज में थे वो स्टाफ बाच लेके मैम सभी को दौड़ाते थे, तो वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं, हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया, स्टाफ बाच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
0: सुखद रहा है। मतलब अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियां करवाते थे।
1: जी नहीं, मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था, तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान, तो उनसे मैं कोचिंग लेता था, तो उसी प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज

0: वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था, तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था, इस प्रकार से करना है, डंडे ऐसे मारनी है, बैंड ऐसे करना है, सेटअप ऐसे लगाने, तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
1: तो जो आप ट्रेनिंग देते थे उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर जी, तो कैसा महसूस होता था और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी और आपकी नियुक्ति कब हुई?
0: मेरी नियुक्ति 2005 में
1: जी, ये तो आपने मुझे बताया। तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी, उनके बाद हुई?
0: उनके बाद में हुई मैम, मेरी सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम। और जो है मैंने काफी और ज्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए जिनको मैं
1: सिखाता था
0: वो लग गए, तो मेरे को और भी ज्यादा लगन हुई, मैंने और ज्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर जो है अपनी एसएसबी बल में
1: ने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई, यानी कि मास्टर जी
0: नहीं नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता, जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है अगर उसमें ये भावना हो कि उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है, अपने आप से लड़ना सिखाता है। कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वही हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है। तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कांस्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भले ही इस बात का श्रेय ना ले, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है।

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से वीरों

0: कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से, और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहाँ दर्शाता है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफर बहुत यादगार उनके लिए रहा है, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी किस्से हैं, बहुत सी कहानियां इनके जहन में जरूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ जानना चाहती हूँ, 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था जिसके बाद आपके चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया, और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं, क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं बताना चाहूंगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35 BM में। हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, IPS संजय सर ने, और हमारे बल ने SSB ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल के जो सबसे बड़ी नीम है हमारे डीजी साहब ने जो है अपने SSB को जो कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का उसका। तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पे थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो चार पांच जो जिले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियाँ होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थे जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में, संजय सर थे IPS IG संजय सर, और DIG सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित साहब DC डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारे टीम के हिस्से थे जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया करा जाए। तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई, हर एक प्रकार की उसमें जो है ट्रेनिंग में जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ

0: अच्छे फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था उस वक्त? कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ, कैसा कैसा लगा आपको?
1: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊं। तो आईजी जो आईपीएस आईजी संजय सर थे, वो और अपने जो डीआईजी सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर, टू आईसी नरपत सर, डीसी, ये सभी आते थे और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ, उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए स्ट्रक्चर और टीम का सीएचएम बना दिया जाए।
0: वाह।
1: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरे मित्र थे, वो दो नंबर टीम का मैं सीएचएम था, एक नंबर टीम का सीएचएम वो था।
0: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूँ, किसी के साथ साझा किया था उसमें?
1: नहीं मैम, ये साझा तो
0: नहीं किया जाता ऑपरेशंस के दौरान,
1: जो है टीम जो एक ही माइंड के, एक माइंड सेट के, सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल
0: होता है।
1: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्र किया और टीम का हिस्सा बनाया, उसमें ऐसा मैम कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो। एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वो एक ऑफिसर करता है, बराबर जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
0: बिल्कुल एक टीम की तरह काम करते हैं
1: जी, जिसमें कि मैम जो आई जी जो संजय सर और डी आई जी सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं, वो कोई भी हो अपना साथ साथ दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जनरल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी चीजें मैं बता भी नहीं पाऊंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल अधूरी बातें हैं, और जब हम कहते हैं जब आपकी फोर्स की बात होती है तो बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनको हम उनके सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रही है और विजयी प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी माओवेस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मेरा चयन किया गया, हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: मैम देखो, बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज्यादा हुई और एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता नहीं मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी डीजीडीस मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
0: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, आतुर हो रहे होंगे जानने के लिए और कौन से सम्मान है जिनसे नवाजा गया आपको।
1: जी मैम, मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है, डीजी साहब की तरफ से मेरे को

0: सिल्वर डीजी डिश मिली है, गोल्डन डीजी डिश, गोल्डन डीजी डिश 1 स्टार, गोल्डन डीजी डिश 2 स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे डीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, कमांडेंट सर ने काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिले, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया मैम।
1: वाह क्या बात है। और आपके जो पदक है इस वक्त आपने धारण किए हुए हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे हैं ना, उनकी दीप्ति, उनकी चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है। और ये सच्चे देश प्रेम की गाथा है, शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन वे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए, और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सशस्त्र सीमा बल में रहकर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं है ना, तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
0: जी जी।

0: स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत है। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है अपने अपने कार्यों को कहते हैं ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि अगर ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता, कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी तो जब दूसरों से बात करते होंगे बताते होंगे तो जरूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए कहते हैं ना कि मजबूत एक मजबूत सिपाही बन सके, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैंने SSV में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NSG ब्लैकेट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NSG के अंदर, वो भी किया है, वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो है PTI इंस्ट्रक्टर था NSG में और DIP ड्यूटियाँ करी है।
0: वाह क्या बात है, तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती।

0: और ना ही जब तक उम्र है आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात और बताइए कि सशस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रहे हैं और 20 सालों का सफर यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा। निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका परिवार, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है
0: जी।
1: तो ऐसे में अपने परिवार सबसे पहले की सशस्त्र सीमा बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभाकर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो किस तरह से सामंजस्य बिठा पाते हैं आप?
0: मैम ऐसा है कि जो परिवार और देश कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को देता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार खुशहाल है तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूं, देश के प्रति समर्पित रहूं।
1: बहुत खूब बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है? वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप तो उनसे क्या कहा आपने, क्योंकि आप फौज में और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज्यादा जरूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं, कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया? कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया?
0: मेरे को मैम समझाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफी डिफेंस में, उनको पहले से पता था, पर फिर भी जो है एक रहती है। तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक है।
1: अच्छा ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे और आपने किसी से प्रेरणा ली? अब बच्चों पर जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियां सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
0: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है, वो एनडीए की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
1: क्या बात है। और हम यही कहेंगे जिस तरह से आपने बहुत लोगों की नैया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे, और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं उनको देखकर वो जरूर प्रेरणा प्राप्त करें।
0: बिल्कुल मैम,
1: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं, और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
0: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है, कोई भी देश का जहाँ भी जैसे भी है, जैसे एफएम रेनबो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो, तो ये जो जहाँ भी जो भी है ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
1: बिल्कुल, कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है, इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। संदेश हमारे पास आए हैं, यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भगिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रही और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं जय हिंद सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित कर रहे हैं, एफएम रेनबो को हार्दिक बधाइयां यहाँ पर लिख रहे हैं, कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें, और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की

0: ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी, आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल भवानी का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोध का, द्वारका सेक्टर 15 ककरोला दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा, और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला। यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम जरूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो डीपी है उसे महसूस होता है कि आप भी सेना में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी, हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में, सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है
0: जी।
1: और मैं यही कहना चाहूंगा, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से, निष्ठा से, कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं
0: जी। एक और संदेश हमारे पास आया है सीटी दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें, और आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, प्रसन्न हूँ संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से। हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी, सशस्त्र सीमा बल जो आज हमारे साथ स्टूडियो में है, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गारंटी से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना, और मैं कहती हूँ कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिले तो आपसे और भी बहुत सारी बातें हो करने की, कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसे कि आपने फरमाइश की थी कि लता मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के लिए, हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और खास तौर पर ये नगमा भागिंदर जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागिंदर सिंह जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एफएम रेनबो के स्टूडियोज में आने के लिए। और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफी चाहूंगी, समय यहाँ पर गुजर रहा है। सीटी जीडी राजेंद्र सिंह जी 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा, क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है एचसी उब्लिक जीडी बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भगिंदर सिंह जी।
1: थैंक यू मैम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति VB नागरत्ना और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। यह टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने बताया कि उन्होंने सतत विमानन ईंधन को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ अर्थात जमीन से सीधे उड़ान और लैंडिंग के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा की। विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027

0: मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। M1 श्रेणी के अंतर्गत वे मोटर वाहन आते हैं जो यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और जिनमें ड्राइवर के अलावा 8 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता नहीं होती है। मंत्रालय ने 6 अगस्त तक इस मसौदा मानदंडों पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस खंड पर यह अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारतीय नौसेना 20 से 23 जुलाई तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 की मेजबानी करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाला संयुक्त कार्यबल 154 संयुक्त समुद्री बलों CMF के साथ मिलकर कर रहा है। यूक्रेन की संसद ने आज एक बड़े सरकारी फेरबदल में सर्ही कोरेत्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कोरेत्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। कोरेत्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा विस्तृत अनुष्ठानों और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। शाम के 5:05 हुए, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही हैं भवानी छंगाणी।

जरा सोचिए, अगर आज आपके दादा दादी से कोई पूछे कि बेटा क्या काम करता है और जवाब मिले कि घर बैठकर दुनिया भर के लोगों के लिए काम करता है, तो शायद पहला सवाल यही होगा दोस्तों, अरे घर बैठकर भी कोई नौकरी की जाती है क्या? और अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ मोबाइल में कमाई करता हूँ, तो पहले लोग कहते थे कि दिन भर मोबाइल चलाता है, लेकिन आज वही मोबाइल पढ़ाई का समाधान भी है, नौकरी का जरिया भी है और बिजनेस का ऑफिस भी है। यही तो आधुनिक युग का सबसे बड़ा बदलाव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवानी छंगाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम युववाणी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर युवा, हर माता पिता और हर परिवार से जुड़ा है, वो है आधुनिक युग और रोजगार की राहें। बिल्कुल दोस्तों, तो आइए बिना किसी भारी भरकम शब्दों के बिल्कुल दोस्तों वाली बातचीत से समझते हैं कि आज के समय में रोजगार का मतलब आखिर है क्या। पहले के समय में दोस्तों रोजगार का मतलब बहुत सीधा होता था कि सरकारी नौकरी, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर खेती या फिर व्यापार। लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है। आज अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो पता है क्या जवाब मिलेगा? वो कहेगा कि मैं ऐप बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं गेम डिजाइन करूंगा, कोई कहेगा कि मैं मार्केटिंग करूंगा और कोई कहेगा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा। यानी आज रोजगार की दुनिया पहले से कई ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराने रोजगार खत्म हो गए हैं, बल्कि नए अवसर पुराने कामों से और भी ज्यादा जुड़ गए हैं। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, आज डिग्री जरूरी है, लेकिन केवल डिग्री ही काफी नहीं है। आज कंपनियां ये भी देखती है कि क्या आप नई चीजें सीख सकते हैं, क्या आप टीम में काम कर सकते हैं, या क्या आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, या दोस्तों क्या आप समय के साथ खुद को बदल सकते हैं। यही छोटी छोटी बातें आज सफलता की पहचान बन चुकी है। अब एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई दो दोस्त हैं, दोनों

एक जैसी पढ़ाई की है। पहला दोस्त पढ़ाई के बाद सीखना बंद कर देता है और दूसरा दोस्त हर महीने कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। कंप्यूटर जैसे भाषा, कम्युनिकेशंस, कई नई तकनीकें वो सीखता रहता है। कुछ साल बाद दोनों के बीच काफी फर्क दिखाई देने लगता है। यानी सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। आज का दौर स्किल्स यानी कौशल का दौर है दोस्तों। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हमने खुद को नौकरी के लायक बनाया है? बिल्कुल नहीं। क्या हमने समय के साथ अपने कौशल को बढ़ाया है? नहीं। अगर जवाब हाँ है तो अवसर भी बढ़ेंगे दोस्तों। आधुनिक युग में रोजगार की कई नई राहें खुल चुकी है। जैसे अगर बात करें IIT और सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डेटा एनालिसिस, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ई कॉमर्स, कृषि में नई तकनीकें, नवीनीकरण ऊर्जा और भी स्वरोजगार हैं। इन क्षेत्रों में लगातार नए अवसर बन रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्वरोजगार आखिर होता क्या है। तो पहले लोग सोचते थे कि जब नौकरी मिलेगी तभी काम शुरू करेंगे, लेकिन आज कई युवा खुद को रोजगार देने लग रहे हैं। कोई छोटा स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई घर से व्यवसाय चला रहा है, कोई अपने हुनर को ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा रहा है। यानी अगर सोच नहीं हो तो शुरुआत छोटी होकर भी बड़ी बन सकती है दोस्तों। आज इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। अगर आपके पास हुनर है तो आपका काम केवल आपके शहर तक सीमित नहीं है, आप देश विदेश और लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है और वो है सही जानकारी चुनना। इसी के साथ ही समय का सही उपयोग करना, लगातार सीखते रहना और एक बहुत ही जरूरी बात, रोजगार जो होता है वो केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। रोजगार हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, परिवार को सहारा देता है और समाज के विकास में भी बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई युवा है तो उसे केवल ये मत कहिए कि नौकरी ढूंढो, उसे ये कहिए कि नई चीजें सीखो, स्किल्स बढ़ाओ, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ और मेहनत के साथ आगे बढ़ो। यही आधुनिक युग की सबसे बड़ी जरूरत है दोस्तों। अगर आप खुद पर काम करेंगे, अगर आप खुद की कोई इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो उसको आगे लेके जाएंगे तो आप जरूर। आज रोजगार की राहें पहले से कई ज्यादा खुल चुकी है दोस्तों। जरूरत है सही दिशा, सही जानकारी, निरंतर सीखने की आदत और पॉजिटिविटी सोच की। और पॉजिटिविटी की जब बात आती है दोस्तों तो मेरे मन में सबसे पहले यही चीज़ आती है, वो है म्यूज़िक। क्योंकि जब मैं परेशान होती हूँ या मैं डाइवर्ट होती हूँ या मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो सबसे पहले मैं म्यूज़िक ही सुनती हूँ, जिससे मेरे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपका मूड एकदम फ्रेश हो गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, तो वो है क्विज टाइम। तो दोस्तों हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो नोट कीजिए कि किस मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF द्वारा आयोजित वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का थीम क्या है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कार्यक्रम के अंत में जरूर मिलेंगे, तब तक सोचते रहिए।
1: आदत बदलो, मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
0: दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि आज भगवान खुद अपने महल से बाहर निकलकर अपने भक्तों से मिलने आ रहे हैं और रास्ते में हर कोई उन्हें अपने हाथों से खींचकर आगे बढ़ा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन यही तो खासियत है जगन्नाथ रथ यात्रा की। यहाँ भक्त मंदिर नहीं जाते बल्कि भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा का इंतजार लाखों करोड़ों लोग पूरे साल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत की सबसे भव्य, सबसे प्रसिद्ध और सबसे अनोखी यात्राओं में से एक जगन्नाथ रथ यात्रा की। जानेंगे कि इसकी कहानी, इसकी परंपरा और साथ में रोचक बातें, इससे मिलने वाली सीख भी दोस्तों हमें लेनी है। जो तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है। जगन्नाथ जी यानी जगत यानी पूरी दुनिया, और नाथ यानी स्वामी अर्थात पूरे संसार के स्वामी। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। इनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी उनकी पूजा की जाती है। अब सवाल आता है कि यह रथ यात्रा होती कहाँ है। यह यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में निकलती है। हर वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को यह यात्रा निकाली जाती है। देश ही नहीं दोस्तों बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रथ यात्रा क्यों निकलती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुड़िंचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की होती है। भगवान वहां कुछ दिन विश्राम भी करते हैं।

और फिर वापस अपने मंदिर लौट आते हैं। इसी वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा भी कहा जाता है। दोस्तों यात्रा की सबसे खास बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के रथ को कोई मशीन नहीं खींचती। हजारों लोग जो श्रद्धालु होते हैं वो मोटी मोटी रस्सियों से रथ को खींचते हैं। लोग मानते हैं कि रथ की रस्सी खींचना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, ना ही वर्ग देखा जाता है, ना ही जाति देखी जाती है, ना ही धर्म और ना ही उम्र, यहाँ सब एक होते हैं। यही तो हमारी संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात है। अब बात करते हैं तीनों रथ की। तीनों भगवानों के लिए दोस्तों अलग अलग रथ बनाए गए हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष होता है, बलभद्र का रथ ताल ध्वज होता है और सुभद्रा का रथ दर्प दलन होता है। हर वर्ष इन रथों का निर्माण नई लकड़ी से किया जाता है और आपको पता है इन्हें बनाने में महीनों की मेहनत लगती है। कई परिवार पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। तो दोस्तों आपने कभी भगवान की मूर्तियां देखी हैं? किसी की आंखें बहुत बड़ी, मतलब जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, हाथ पैर ना बने हो, आपको पता है इसके पीछे का रीजन? मैं बताती हूँ। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान की मूर्तियों का निर्माण विश्वकर्मा जी कर रहे थे, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया गया और मूर्तियां उसी रूप में स्थापित हो गई। आज वही स्वरूप पूरे देश में पूजनीय है। किसी के साथ दोस्तों एक खास परंपरा भी इसी के साथ जुड़ी है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इसे छेरा पहरा भी कहा जाता है। दोस्तों इसका संदेश बहुत ही सुंदर है। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान के सामने सभी समान हैं। सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में ही होती है। रथ यात्रा दोस्तों इसके दौरान आपको पूरी शहर जो होता है वह भक्ति के रंग में रंग जाता है। हर तरफ भजन, शंख की ध्वनि, जय जयकार और श्रद्धालुओं की उत्साह देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर भगवान के स्वागत में खड़ा है। अब जरा सोचिए कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने परिवार, रिश्तों और समाज से दूर हो जाते हैं। मिलजुल कर अगर हमें चलना है तो रथ यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। एक दूसरे का सम्मान करना, सेवा करना और सबसे बड़ी बात, भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल पूजा नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रेम, विनम्रता और अच्छे कर्म भी है। तो अगली बार जब आप टीवी, समाचार या सोशल मीडिया पर जगन्नाथ रथ यात्रा देखें तो केवल एक जुलूस मत समझिए, उसके पीछे उसकी प्रेम, सेवा, समानता, आस्था और एकता के संदेश को भी महसूस कीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर पंछी बोल पाते तो वे हमें कौन सी कहानी सुनाते? शायद वे बताते कि हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद उन्हें धरती पर एक ऐसी जगह मिली जहां इंसानों ने उन्हें सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि अपना परिवार माना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान की धरती पर एक ऐसी अनोखी जगह की जहाँ हर साल सर्दियों के मौसम में आसमान हजारों पंखों की उड़ान से भर जाता है। सुबह की पहली किरण हो या शाम का ढलता सूरज, हर तरफ बस अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपनी एक खूबसूरत पेंटिंग बना दी हो। आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के फलोदी जिले में स्थित खींचन झील और वहां आने वाले दुनिया भर में प्रसिद्ध कुर्जा पंछियों की। तो दोस्तों, राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे मन में रेत के टीले, ऊंट, किले, ये सब आने लगते हैं। लेकिन इसी राजस्थान में एक ऐसा गांव है जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि इंसान और प्रकृति साथ साथ रह सकते हैं। जी हाँ, वो गांव है खींचन। खींचन गांव हर साल सर्दियों में लाखों नहीं बल्कि हजारों कुर्जा पंछियों का स्वागत करता है। इन पंछियों का असली नाम डेमोइंजल क्रेन है, लेकिन राजस्थान में इन्हें प्यार से कुर्जा कहा जाता है। कुर्जा पंछी हर साल मंगोलिया, कब्जानिस्तान और चीन और मध्य एशिया के ठंडे इलाकों से लगभग 4 से 5 हजार किलोमीटर की यात्रा करके राजस्थान पहुंचते हैं। सोचिए इतनी लंबी यात्रा, ना कोई नक्शा, ना कोई मोबाइल, ना कोई जीपीएस, फिर भी ये पक्षी हर साल बिना रास्ता भूले उसी जगह पहुंच जाते हैं। प्रकृति की यह अद्भुत व्यवस्था सचमुच हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, जब हजारों कुर्जा एक साथ उड़ान करते हैं तो पूरा आसमान मानो जीवंत उठता है। उनकी आवाज, उनकी उड़ान, उनका अनुशासन देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। कुर्जा पंछियों की एक और खास बात है दोस्तों कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं। उड़ते समय ये अक्सर अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार से उड़ते हैं। इनसे उनकी ऊर्जा कम खर्च होती है और पूरी टोली आसानी से लंबी दूरी तय कर पाती है। दोस्तों, खींचन आने वाले पर्यटनों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है वो जगह। देश विदेश के फोटोग्राफ, प्रकृति प्रेमी और पंछी विशेषज्ञ यहाँ आते हैं। सुबह और शाम का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि लोग घंटों तक इन पक्षियों को निहारते रहते हैं दोस्तों। और फिर जब हम पक्षियों की बात करते हैं तो मुझे तो दोस्तों वो गाना ही याद आता है जो है मसकली। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

और दोस्तों आरआरबी रेलवे सेक्शन कंट्रोल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आरआरबी को मिलाकर कुल पदों की संख्या 199 है। दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन 15 जुलाई को ही शुरू हो गए हैं और अधिक से अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, ये सब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrbapply.gov.in पर है और इसकी लास्ट डेट दोस्तों 14 अगस्त है।

इंटेलिजेंस आधारित टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा आयोजित वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथोन 2026 का थीम क्या है, तो इसका सही आंसर है सुरक्षित तट समृद्ध भारत। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सी बातें की हैं। हमने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में जाना है, हमने खींचन झील और कुर्जा के बारे में जाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर से मिलेंगे ऐसे ही मस्ती मजाक और बहुत ही रोचक जानकारी के साथ। मैं भवानी, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही थी भवानी छंगाणी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम धीनड़ी बातियां हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।

Yine bir bak ya, bak ya, bak ya.

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
2: काई करो दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीनेरी बातें। काकी साहब ई कार्यक्रम सुनन से मिलसी पशुपालन से जुड़ी होरी सबली समस्या नु समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातें धीनेरी बातें कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: बंशी भाई रा भी
4: मोकला मोकला
5: राम राम
4: राम राम बंशी भाई राम राम
5: राम राम हरखू भाई राम राम।
4: देखो आज गुरुवार है सिंजरी देखो कितनी बजगी
5: 5:30
4: आज देखो अब डीक है सगला पूरे प्रदेश रह जगह भी पशुपालक भाई है वे आज सोचे गयी आज चर्चा किन बात पर उसी चौपाल में
5: यार देखो सा जिज्ञासा नहीं सगला रे मन रे मायने रेवे और खाली राजस्थानी जिका अपना लोग है भाई है उनारी नहीं राजस्थान सुबारे भी तो लोग इन्हें सुने है।
4: हाँ भाई हमें तो देखो मोबाइल माध्यम से आखो विश्व सुन सके
5: एकदम
4: और FM बैंड 101.6 MHz पर पण एक बात बताओ काल दिन भर डागले पर लगोड़ा झाड़ू लेवड़ो कहीं कर रिया था
5: हरकु भाई थे तो पूरी कहने की जानकारी रखो हर आदमी रे कौन कहीं करे। खैर हूँ आपने बता दूं कि भाई देखो सा हूँ कर रहे थो साफ सफाई
4: मानसून भी तैयारी कर रिया था।
5: हाँ भाई देखो सा मानसून आने वाला है बरसात आने वाली है तो उनसे पहले आप अपने घर री साफ सफाई कर लेवा आस पास से सफाई कर लेवा तो बीमारियां सो आप ही तो बच सा।
4: बिल्कुल सा और जो पानी है नी बोल है अनमोल। हाँ ओ वर्षा जल अगर आप डागला साफ उसी छत साफ उसी तो वो साफ सुथरो पानी आप कुंडी तक पूगी और वो आप पूरे बरस पी सका और पीवे लोग
5: पीवे भी है भाई आपने जो गांव रे मायने तो वही तो साधन है पानी बचत रो।
4: हाँ और कई जना देखो पानी ने ये बेवाद है वो अच्छो को नहीं सा जितो आप इन्हें बचा सका। देखो पानी है सोनो अगर मानो तो
5: एकदम सच्ची बात है सोने से भी महंगो है।
4: हाँ
5: कि भाई बाकी भी चीजें हैं जिकने तो आप बना सका पर पानी ने बना सका की
4: नहीं नहीं सर हमें देखो

0: सारा जगह प्रयास है नहीं हर घर नल
1: हर
0: पानी पूजे पर फिर भी जगह चीज आपने आराम से मिल रही है नी कोई भी चीज अगर आपने आराम से मिल रही है चाहे पानी हो चाहे बिजली हो बेरो आपने सदुपयोग करना है
1: हाँ दुरुपयोग तो भी करना ही नहीं चीज
0: है कमरे से निकलिया लाइट जगरी तो जगरी है ना ना ना जी निकल रहे हो तो पहलो काम आपने कही करना है
1: खटको बंद कर दो
0: ओ अगर छोटो सी काम है वो आप ध्यान रखता है तो आप बचत खाली आप ही को नहीं आ देश की बचत है और जे अपन घर में पानी रे नल है नहीं आप वो भी आप देख लेंगे खुल्लो तो को नहीं है फालतू बह तो नहीं रही है इन छोटी छोटी बातें ध्यान रखता नहीं तो आज की बचत नहीं आ महा बचत है आने वाली पीढ़ी वास्ते बचत है
1: आज की बचत है नी वो काल रो अपर खुद रो जीवन होसी
0: हाँ देखो सगड़ा न सिला रिया सामे जी का देखो कितना जना बैठे राम राम बैठो बैठो तो अब आप बताओ आज चर्चा किन विषय पर कर सो
1: भाई देखो सही है कि अपना जगह पशुपालक भाई है बड़ा ही सजग है और अपन ने कागजिया लिखे है कि भाई इन इन विषय पर जानकारी चाहे तो मिथक हो या करे अपने समाज रे मायने पशुओं से जुड़ी तो उन बाबत जानकारी दो और कई लोग बाग में के भाई टीकाकरण कई हुए इन बाबत जानकारी दे रहो सा और कई जना लिखे कि भाई टीका लगाने से फायदो हुए नहीं हुए ए जानकारी पूछो
0: टीकाकरण ने ले पर भी कई मिथक है सा है नहीं
1: बिल्कुल है
0: तो जन विषय कई बनियो के पशुओं माए टीकाकरण मिथक साच और लाभ
1: विषय बन गयो आज रो
0: हानी तो आज मैं चौपाल में जानकारी देने सारू आमंत्रित करिया है सहायक आचार्य राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे डॉक्टर राम कुमार जांगीड तो डॉक्टर राम कुमार जी आप चौपाल में घनो घनो स्वागत है आपने मैं करा
2: राम राम, राम सा
0: राम राम सा और अब देखो आज आप बातचीत करिए पशुओं माए टीकाकरण मिथक साच और लाभ इन विषय पर आज डॉक्टर साहब आपसू मैं बातचीत कर सर आपसे उम्मीद करा कि आप मैंने अच्छी अच्छी जानकारी दे सो
1: और इन सर देखो सर खूब भाई ठीक हो तो पहले सवाल हूँ कर लूँ डॉक्टर साहब
0: हाँ बिल्कुल
1: हाँ तो सही पहले डॉक्टर साहब आप बताओ कि पशुओं के खातिर टीकाकरण जरूरी क्यों है और किन भात रोगा से सुरक्षा दिया करे इन बाबत महाराज का पशुपालक भाई उन्होंने सकला ने आप जानकारी दिलाओ सा
3: जैसा कि सभी पशुपालक भाई अनुभव करते रहते हैं कि पशुओं को समय समय पर अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं इनमें से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका उपचार संभव होता है और उससे पशुपालक को अधिक नुकसान नहीं होता लेकिन कुछ एक संक्रामक बीमारी इतनी गंभीर होती है कि वह पशु की जान भी ले सकती है और पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है उदाहरण के लिए गलगोटू हुआ फड़किया हुआ ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती है और पशुपालक के पास उपचार कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वैक्सीनेशन करके इन बीमारियों को रोका जा सकता है बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन कराया जा सकता है वैक्सीनेशन या टीकाकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पशु के शरीर को किसी विशेष रोग से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है और वैक्सीन रोग उत्पन्न नहीं करती बल्कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करती है सामान्यतः टीका लगने के 15 से 30 दिन के बाद शरीर में उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी या समर्थी कोशिकाएं विकसित होती है और ये एंटीबॉडी और समर्थी कोशिकाएं कुछ महीनों या वर्षों तक बनी रहती है भविष्य में यदि वही रोगों जिसके लिए वैक्सीनेशन हो चुका है शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र इन एंटीबॉडी या समर्थी कोशिकाओं की सहायता से उसे तुरंत पहचान कर प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर देता है परिणाम स्वरूप अधिकांश मामलों में या तो संक्रमण नहीं होगा या होगा भी तो बीमारी बहुत हल्के रूप से रहेगी तो इस प्रकार से टीकाकरण पशुओं को स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी सुरक्षित और किफायती निवारक उपाय है इसका उद्देश्य बीमारी का उपचार करना नहीं बल्कि बीमारी से होने से पहले उसका बचाव करना है
0: जी जी बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि टीकाकरण क्यों जरूरी है टीकाकरण एक वैज्ञानिक पद्धति है और एक स्वस्थ राखन सारू और टीकाकरण होया करे रोगा से लड़ने की क्षमता बढ़ाया है एक डॉक्टर साहब कई हरा पशुपालक भाई कहा करे कि जे पशु स्वस्थ है तो फिर टीकाकरण क्यों
3: स्वस्थ पशु में टीकाकरण कराया जाता है वैसे
0: अच्छा
3: क्योंकि जितना ज्यादा पशु स्वस्थ होगा उसकी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम में उतना अच्छा काम करेगा और जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या करता है उसमें एंटीबॉडी और समर्थी कोशिकाएं विकसित करता है अगर पशु पहले से बीमार है या बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसका प्रतिरक्षा प्रणाली वो अपेक्षित रूप से कार्य नहीं करेगी ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी और समर्थी कोशिकाएं बन नहीं पाएगी तो उससे यह होगा कि टीकाकरण का प्रभाव भी कम हो जाता है प्रभावशाली नहीं पाता तो इसलिए प्रत्येक पशुपालक को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि टीका हमेशा स्वस्थ पशु में लगाया जाता है ताकि भविष्य में गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रह सके
0: जी जी तो थाना कहने का मतलब है कि पहला सुन चौकीदार मायने खड़ा कर दे जो चोर है तो वो पहला सुन सक्षम है

0: वास्ते जे अस्वस्थ पशु पक्ष टीकाकरण करा तो बुध फायदो तो जल्दी मिलेगा।
1: अस्वस्थ पशु में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, इतनी सक्रिय नहीं होती
0: जी।
1: सुरक्षा उसमें मिलेगी, उसमें सुरक्षा मिल सकती है, पर इतनी अच्छी सुरक्षा नहीं मिलेगी जितनी स्वस्थ पशु में मिलेगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, जो डॉक्टर साहब बताए कि भाई रोगाणु से लड़ने की एक शक्ति है जिसको टीकाकरण दिया करे, अब फिर भी डॉक्टर साहब लोग बात क्या करे कि टीको लगाने के बाद पशु बीमार पड़ जाया करे, तो इन मिथक में कितनी सच्चाई है इन बाबत भी आप जानकारी दें सर।
0: हाँ,
1: यह एक भ्रांति है, अधिकांश टाइम में क्या होता है वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित रहती है। कुछ पशुओं में क्या होता है वैक्सीन लगने के 24 से 48 घंटे के भीतर हल्का बुखार, सुस्ती, हल्की कमी, इंजेक्शन वाली साइड पे थोड़ी सी सूजन आ सकती है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह इस बात का संकेत है कि पशु की प्रत्येक सुरक्षा प्रणाली टीके के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। ऐसे लक्षण अधिकांश मामलों में बिना किसी विशेष उपचार के अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ मामलों में पशुओं को लगता है कि टीकाकरण के बाद पशु में तेज बुखार आ रही है, सांस लेने में कठिनाई आ रही है, अत्यधिक सूजन या कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे से संपर्क कर सकते हैं, पर टीकाकरण एकदम सुरक्षित होता है। टीकाकरण से होने वाली सामान्य और अस्थायी प्रतिक्रियाओं से घबराने की जरूरत नहीं होती। वास्तव में टीकाकरण न कराने का जोखिम टीका लगाने के बाद होने वाली सामान्य प्रतिक्रियाओं की तुलना में कहीं अधिक गंभीर होता है, इसलिए अपने सभी पात्र पशुओं को समय पर टीकाकरण कराना आवश्यक है।
0: बिल्कुल सर, देखो बात तो खड़ी है कि समय पर अगर टीकाकरण करा लेवा अपन पशु है वो स्वस्थ रहे। और अब डॉक्टर साहब बात आवे कि अपने क्षेत्र में किसा किसे महत्व रोग है जिन्हें खातिर नियमित टीकाकरण की जरूरत है या जरूरी मानी जाए।
1: तो हमारे क्षेत्र में गाय और भैंसों के लिए खुरपका, रोपका, गलगोटू, ब्लैक क्वार्टर, लैम्पिस स्किन डिजीज तथा निर्धारित आयु की मादा बच्चियों में ब्रुसेलोसिस के विरुद्ध टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार भेड़ों, बकरियों, पेपर या फड़कियों, एंट्रोटॉक्सिन तथा प्रभावित क्षेत्रों में सिकपॉक्स, गोटपॉक्स के विरुद्ध नियमित टीकाकरण की सलाह दी जाती है।
0: और देखो पेन कॉपी में लोग ले बैठा है भी लिखता जा रहे हैं पॉइंट के, हाँ आ चीज नहीं है, आ चीज अपने ध्यान रखनी है।
2: हाँ, और देखो सर आ सजगता है नी आई अपने कई करे कि अपने बढ़ा है अपना जो पशुधन है उन्होंने बढ़ा है और इन्होंने सूचक है इन्होंने देखो सबूत है कि देखो सर सरिता भाई है जो कागज में लेकर भेजे है। डॉक्टर साहब पूछे कि क्या गर्भवती मादा पशु छोटा बछड़ा या मेमना रे भी टीको लागिया करेगी, जे लागी जाएगा भी टीको तो किसी किसी बात का ध्यान है जो माने रखना चाहिए।
0: भाई प्रश्न तो सरिता भाई अच्छा पूछे, बताओ डॉक्टर साहब जानकारी दो।
1: असल में गर्भवती

0: बहुत सुरक्षित मानी जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था के अंतिम चरण में पशुओं को नहा सकना, लंबी दूरी तक ले जाना और अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचाना चाहिए। इसलिए इस अवधि में टीकाकरण का निर्णय हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह से लेना चाहिए। छोटे बछड़े बनाने में जन्म के तुरंत बाद टीका नहीं लगाया जाता, क्योंकि शुरुआती दिनों में माँ के पहले दूध से प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। जैसे जैसे यह सुरक्षा कम होती है, निर्धारित आयु और टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार वैक्सीन लगाई जाती है। अधिकांश रोगों में छोटे मामले में 3 से 6 महीने की आयु के बीच ये टीके लगाए जाते हैं, पर कुछ एक टीके होते हैं जो अर्ली एज में लगाए जा सकते हैं, टिक वगैरह जो उनसे बचाव वाले टीके होते हैं। ऑक्टोपेंसेटिवलेस जो डिजीजेज होते हैं उनके लिए एक दो टीके ऐसे होते हैं जो लगाए जा सकते हैं अर्ली एज में भी। क्रॉस ब्रीड के लिए होते हैं सिर्फ,
1: जवाब मिल गयो। और पशुपालक भी है, उन्होंने भी जानकारी मिल गई उसे,
2: बिल्कुल मिल गई। सविता भाई जी की मुस्कुराहट इन बात बताने के बाद संतुष्ट है जवाब। अब एक डॉक्टर साहब है, आपसे जानना चाह की अलग अलग पशु जिया गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इन सारू टीकाकरण जो एक वार्षिक कार्यक्रम है वो किन बात होना चाहिए?
0: असल में टीकाकरण का जो कार्यक्रम होता है पशु की प्रजाति, आयु, क्षेत्र, प्रचलित रोगों तथा सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में सामान्यतः गाय और भैंस के लिए खुरपका और मुहपका की वैक्सीन होती है, प्रत्येक 6 महीने के अंदर होती है, वर्ष में 2 बार और 7 से पहले की जाती है। इसी प्रकार गलगोटू उसकी भी साल में 1 बार वैक्सीन होती है।

दो साल में एक बार वैक्सीन लगती है। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस में, ब्रुसेलोसिस के लिए जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको 4 साल में की अवधि में लगती है, सिर्फ बच्चों में लगती है वैक्सीन। इसके अलावा बंदर बकरियों में पीपीआर के लिए 3 वर्ष में एक बार वैक्सीन लगती है सरकार के दिशा निर्देशों।

0: सिर्फ एक बार वैक्सीन लगती है बरसात से पहले और सिप गोट गोट पॉक्स के लिए वैक्सीन लगती है. तो ये इतने वैक्सीन हमारे जो सिप और गोट जो कई भैंस है इनके लिए अभी कई राजस्थान क्षेत्र में लग रही है. तो इनका कार्यक्रम सरकार के निर्देश अनुसार चलता है सर.
1: जी राजस्थान सरकार का दिशा निर्देश है बीर हिसाब से टीकाकरण को कार्यक्रम चालू करें और आपने बीर मैंने भागीदारी निभानी चाहिए. अपन धर्म पशु है जिसका समय पर जो टीका लगाओ है मैंने अपने समय पर अस्पताल जाकर अपने टीको लगाओ
2: और अब जरूरी कही है कि बताओ
1: जरूरी तो वो डॉक्टर साहब का टीकाकरण जरूरी है.
2: हाँ तो वो तो भी समय लागी लगाओ भी चाहिए और अब बात करें आज भी बात करें
1: मनोरंजन में टीको चाहिए. तो भैया वंशी भाई के गीतों लो सुना दो तो आप से सुनो एक नहीं.

0: तो भाई आबार आप सुनियो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेड़ा आप से सुन दिया हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति धीणेरी बातें। और आज अपन जानकारी देऊं सर पधारे राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर राम कुमार जांगीड़। और आज आप बातचीत कर सा पशुआ माए टीकाकरण मिथक साच और लाभ विषय पर।
2: भाई देखो सा अपन जो काम है वो है मिथक जितना भी है उन्होंने दूर करने रहो।
0: हाँ।
2: और उन सारू आवे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अबे मारो जो को आगलो सवाल है वो आपसु ओ है कि जे कोई पशु ने तय समय माथे टीको नहीं लगा पावा अगर जे तो उन बेड़ा पशु पालक ने कई करनो चाहिए, इन बाबत आप जानकारी दे सा।
3: यदि किसी कारणवश निर्धारित समय पर टीका नहीं लग पाया है वो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बिना देर किए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशु चिकित्सक पशु की आयु, टीकाकरण का पिछला रिकॉर्ड, टीका छूटने की अवधि को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेता है कि केवल छूटी हुई खुराक लगानी जरूरी है या टीकाकरण का कार्यक्रम पुनः प्रारंभ करना है। इसलिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के स्वयं कोई टीकाकरण संबंधी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखें कि टीकाकरण में अनावश्यक देरी होने पर पशु खुरपका, मुंहपका हुआ, गलघोंटू हुआ, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ा बुखार हुआ तथा अन्य संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए यदि किसी कारण से टीका छूट जाए तो उसे यथाशीघ्र पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार पूरा करना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी उपाय है।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अब एक मिथ कहला या भ्रांति है कि क्या करे है कि पशुपालक के देसी नस्ल जगह पशु है भी टीका लगाने जरूरत ही हो वह नहीं, आप बात कितनी सही है इधर बार थोड़ी बहाने जानकारी दो सा।
3: यह धारणा सही नहीं है। असल में संक्रामक रोग नस्ल देखकर हमला नहीं करते। यह भी सही है कि कुछ परिस्थितियों में विदेशी या क्रॉस ब्रीड नस्लों के पशु स्थानीय जलवायु या उनके जेनेटिक मेकअप, पशु प्रबंधन प्रणाली के साथ पूरी तरह अनुकूल न होने के कारण कुछ लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देसी नस्ल के पशु सभी रोगों से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। जैसे खुरपका, मुंहपका हुआ, गलघोंटू हुआ, लंपी स्किन डिजीज हुआ, PPR हुआ, ब्रुसेलोसिस हुआ और रेबीज हुआ, ये ऐसे संक्रामक रोग हैं जो किसी भी नस्ल के पशु को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी पशुपालक भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूँगा कि देसी नस्ल का होना रोगों से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। पशु की वास्तविक सुरक्षा समय पर टीकाकरण, संतुलित पोषण और अच्छे प्रबंधन से ही सुनिश्चित हो सकता है।
0: जी साहब, देखो चर्चा करा जाने मिथ टूटे
2: है ना, अपन तो काम ही वही है की ज्ञान है जो डॉक्टर साहब के माध्यम से उन्हें तक
0: पुगावना।
2: डॉक्टर साहब जी थे आप बताओ की टीकाकरण है बहुत जरूरी हुआ करे सगला पशु वाले खातर, तो टीकाकरण री बेड़ा लगावती बेड़ा और उनारे बाद रे मायने किन किन बातों रो ध्यान रखनो चाहिए, इन बाबत भी तो महाराज का पशुपालक है उन्होंने आप जानकारी दियो सा।
0: बिल्कुल,
3: टीकाकरण हमेशा प्रशिक्षित पशु चिकित्सक और पशु विभाग के अधिकृत कर्मचारी से ही करवाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करे कि वैक्सीन सही तापमान अर्थात कोल्ड चैन में सुरक्षित रखी गई हो। टीका केवल स्वस्थ पशु को लगाना चाहिए। यदि पशु गंभीर रूप से बीमार है तो पहले उसका उपचार कराना उचित है। टीकाकरण के बाद पशु को पर्याप्त आराम, स्वच्छ पानी, संतुलित आहार उपलब्ध कराना चाहिए और अगले 24 से 48 घंटे तक उसकी निगरानी करें। इंजेक्शन वाली जगह पे हल्की सूजन, हल्का बुखार, कुछ समय के लिए सुस्ती, सामान्य प्रतिक्रियाएं हो सकती है और सामान्यतः स्वयं ठीक हो जाती है। लेकिन यदि पशु को तेज बुखार है, सांस लेने में कठिनाई है, अत्यधिक सूजन है, कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दे रहा है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के दुष्प्रभाव वैक्सीन लगने के बाद होते हैं। इसके अतिरिक्त बेहतर प्रतिरक्षा के लिए पशुओं को नियमित कृमिनाशक और संतुलित पोषण और स्वच्छ आवास भी अत्यंत आवश्यक है।
0: जी साहब, देखो छोटी सी बात सुई एजगा मिथक है, भ्रांति है, टूट जाए करे। और अब एक डॉक्टर साहब बताओ कि सरकार द्वारा भी कोई निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया करे कहीं, जे चलावे तो हमारा पशुपालक भाई

0: लाभ क्या उठा सके।
1: भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत खुरपका मुंहपका हुआ, लंपी स्किन डिजीज हुआ, ब्रुसेलोसिस हुआ तथा कुछ अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम करना उनका उद्देश्य है। तो पशुपालक भाइयों को इन जो योजनाएं हैं इनका लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय या ग्राम पशु पंचायत, पशुधन सहायक अथवा पशुपालक विभाग से संपर्क करना चाहिए। कई स्थानों पर विभागीय टीमें गांव-गांव और घर-घर में जाकर टीकाकरण करती है, तो हमें उस टाइम उनका टीकाकरण जो टीम है उसका सहयोग करना चाहिए और टीकाकरण के बाद उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए ताकि भविष्य में अगली खुराक समय पर लगाई जा सके। पर किसान को जो टीकाकरण करने वाली जो टीम है उसके साथ कॉन्टैक्ट करना ही सबसे उपयोगी जो तरीका है कि उसको टीकाकरण जो परियोजना है उनका लाभ मिल सके। तो इनकी जानकारी होना सबसे इम्पोर्टेंट है
0: भाई। आपने भी देखो जागरूक होने की जरूरत है कि आप गांव में जो टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है तो आपने भी बढ़ चढ़ हिस्सों लेने, आपने जानकारी लेने के भाई आप गली मायने कद आई और आपने किसो टीको लगवाने। फिर डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण बात बताए कि आपने लिखना भी है कि वो टीको किसो लगे और कद लगे, ताकि अगले टीको जद भी लगे बीरो बखत आपने ध्यान में रहे कैसा हाँ आज वो टीको लगे, हम इतना दिन बाद में इतना महीना बाद में वो टीको लागणो है जी आप लिखियोड़ो रहसिन जन आप ध्यान में रहसिन के टीको कद लगवाड़ो है।
2: और जो लिखा पट्टी है नी उन्होंने तो भाई खासो महत्व है, चाहे वो व्यापार री बात हो और चाहे वो पशुधन री, भाई पशुधन भी तो एक व्यापार है भाई, उन्होंने मायने भी तो आपने लेखो जोखो राखनो चीजे कि भाई किसो पशु है जो स्वस्थ है, कद टीको लगायो, कद वो बीमार पड़ियो, कद नहीं पड़ियो, तो ये जानकारी उसी उसी भी तो आपने लाभ मिल सी।
0: बिल्कुल शादी को खाली व्यापारी बात ना करो, स्वास्थ्य की भी बात करो, स्वास्थ्य वीरो भी लिखा पड़ी जरूरी
2: है।
0: टाबरा टीका लगावन गया भाई, वो पहलो टीको लागे, दूजो लागे, चौथा लागे, वीरो एक कागज रे मायने लिखियो डा है कि ई महीना ओ टीको लागने, फिर इतना महीना बाद ओ टीको लागना है।
2: भाई सीधी सी बात आई है कि भाई बोली री बात या सुनी और जी की बात है नहीं, बा हो सके आप भूल जावा पर लिखित रे मायने होसी नहीं भाई, आप जद भी कदी भी देख सका।
0: बिल्कुल सर
2: भाई देखो सर आपा तो प्रयास करियो कि भाई घनकराज का विषय है, बातें है, प्रश्न है, मैं डॉक्टर साहब से पूछा, फिर भी चालती चालती बेड़ा मारा पशुपालक ने आप रो कई संदेश है डॉक्टर साहब जिके सुबह आप रे पशुधन ने स्वस्थ और सुरक्षित रख सके।
1: अंत में मेरा सभी पशुपालक भाइयों और बहनों से यही अनुरोध है कि रोग होने का इंतजार न करें बल्कि समय रहते उसका बचाव करें। याद रखिए इलाज से बेहतर बचाव है और बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है समय पर टीकाकरण। सरकार और पशुपालक विभाग समय समय पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाते हैं। हमारे पशु चिकित्सक और पशुपालक विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी घर घर जाकर आपके पशुओं का टीकाकरण करते हैं। मेरा सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि वे इन अभियानों में पूरा सहयोग करें, अपने पशुओं को समय पर टीकाकरण करवाने के लिए उपलब्ध कराएं। आपके सहयोग ही इन अभियानों की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वस्थ पशु ही समर्थ पशुपालक, सुरक्षित परिवार और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान है।
0: बिल्कुल सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब आपने कि स्वस्थ पशु ही समृद्ध पशुपालक है और सुरक्षित परिवार और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान है सर।
2: बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब बात बताइए भाई।
0: और अब डॉक्टर साहब है तो पन बात कही जी की मारे माथेर माने नोट होगी कि रोग उनरो इंतजार ना करो।
2: हाँ।
0: के रोग उसे पछे आप टीकाकरण करा सा नहीं सा आ जागरूकता पर मन में होनी चाहिए और लिखा पढ़ी भी होनी चाहिए कि टीको कद लगे और अगलो टीको कद लाग सी। तो देखो टीकाकरण से जुड़ी आज अपने बहुत चीज की भ्रांति आई बे मिट्टी और महत्वपूर्ण अपने जानकारी मिली, तो हमें देखो बखत इशारों करने लग गया है।
2: हाँ। कदर तो भाई आपने करनी
0: बिल्कुल सर। तो पशुपालक भैया मैं आपने बता दूं आज चौपाल में जानकर देव सर पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से सहायक आचार्य डॉक्टर राम कुमार जांगीड और आज आप बातचीत करी पशु हमारे टीकाकरण मिथक साच और लाभ विषय पर। तो डॉक्टर राम कुमार जागीर साहब आप चौपाल में पधारे और हमारे पशुपालक ने बहुत ही महत्व जानकारी आप दी, इन सारों में आपने देवा धन्यवाद और करा
2: राम राम सा
1: राम राम सा।
3: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर रे ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति धीणी री बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति है श्रीमती पुनीत बिश्नोई, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशीरी। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना

0: किया बैठे हो?
1: कई गंदा हूँ बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और भी रो जिसरो बिकूं।
0: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया काकी सा ई कार्यक्रम सुनन से मिलसी पशुपालन से जुड़ी सबड़ी समस्या का समाधान।
2: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढूंढा मारू चैनल है। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई।

0: थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक सातवें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलम आरू चैनल है। शाम के 6:05 हुए, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं पुरानी फिल्मों से कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले किशोर कुमार की आवाज़ गाइड फिल्म के लिए।

0: गाइड। जी हाँ, ये नाम था फिल्म का जिसका नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे SD बर्मन।
1: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म संगीत के इस पुराने फिल्मों से गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र की आवाज। माफ कीजिएगा, भूपेंद्र और आशा भोंसले की आवाज। एतबार फिल्म के लिए गीतकार हैं निदा फाजली और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने आदमी फिल्म का गीत सुना। आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र की आवाज़। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के लिए गीतकार हैं निदा फाजली और संगीतकार हैं खय्याम।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को कल रवाना करेंगे। 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम अदालत में पेश करने को कहा। प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी की कल से शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इसे रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित होगी। इस तकनीक में हाइड्रोजन को बिजली में बदला जाता है। इसके संचालन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई ये रेलगाड़ी भारत की उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाती है। इस रेलगाड़ी के शुरू होने से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। इन देशों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इसमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इसे हेरिटेज लुक के साथ पुनर्विकसित किया गया है।
1: ये स्टेशन के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्फर्स है, उसकी कुछ चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम हमारे अवेलेबल हैं और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री है, खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे, वो ये जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक एसी वेटिंग हॉल भी है। डिपार्चर हॉल से वो हेलिंग और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेंटर की सुविधा है। तीन प्लेटफॉर्म है, तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से शेड्यूल मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आज हाईकोर्ट में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की तारीख बताने के निर्देश दिए। साथ ही आरक्षण लॉटरी का ब्यौरा और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंपने की तारीख बताने को कहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, किंतु ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी का हवा

0: देते हुए सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने मीडिया को बताया कि मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
1: डिपार्टमेंट्स के, लोकल बॉडीज के हैं, पंचायत के हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि वो ये बताएं कि लॉटरी की डेट क्या रहेगी रिजर्वेशन के लिए, और थर्ड जो है इलेक्शन कमिश्नर को, इनको स्टेट अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इलेक्शन की डेट बताएंगे, इसलिए 20 तारीख को मैटर की दोबारा सुनवाई होगी। 20 तारीख को ये तीनों डेट्स बताने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिए।
0: पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार पंचायत चुनावों को समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास की जो है, उसमें पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जिस तरह से कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उसके जो निर्देश है उसका पालन भी करेंगे और जल्दी उसका समाधान सरकार की तरह से तैयार की है।
0: राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने चुनाव की शुरुआती तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची निर्माण, मतदान केंद्रों का चयन, रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति और अन्य व्यवस्थाएं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है। अदालत का कहना है कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि छात्र इसे आसानी से अपना सके। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार से नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध और असाध्य रोग से पीड़ित कैदियों की जल्द या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए समान तंत्र सुनिश्चित करने के लिए नीति को 3 महीने में अधिसूचित करने का आदेश दिया है। देश में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए चलाई जा रही उड़ान योजना की अवधि 10 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार ने अगले 10 वर्षों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ये जानकारी नागर विमानन मंत्री केंजरापू राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत संचालित होने वाली एयरलाइंस को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। जयपुर में पहली बार आज विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें सुरक्षित और वैध प्रवासन को बढ़ावा देने, विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंटों से नागरिकों को बचाने, प्रवासियों के कल्याण, कौशल विकास, पर्यटन और निवेश पर चर्चा की गई। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में ये पहल की गई। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती रंगनाथन ने बताया कि इस दौरान प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
3: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को, विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं उनके सुझाव के।
0: जयपुर के होम्योपैथी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने समारोह में 760 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। बिड़ला सभागार में हुए इस कार्यक्रम में चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट काम करने वाली प्रतिभाओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बागड़ी ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही चिकित्सा से जुड़ी ज्ञान परंपरा रही है। उन्होंने होम्योपैथी को कारगर चिकित्सा पद्धति बताते हुए इसे अनुसंधान के आदर्श के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री जाधव ने इस मौके पर कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को दुनिया भर में अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते

0: कुछ सालों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।
1: देश में भी आयु शिक्षा का विस्तार हुआ है, आयु चिकित्सा का ढांचा मजबूत हुआ है, अनुसंधान को नई गति मिली है और औषधियों के गुणवत्ता मानक भी सुदृढ़ हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुए है तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ICAR के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों को किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल 386 नई फसल किस्मों और 117 बागवानी किस्मों को विकसित किया गया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायो फोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलिनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: राज्य में चल रहे मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अधिकतर हिस्सों में अगले 3-4 दिन बनी रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मौसम विभाग ने कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात के आसार जताए हैं। आज ज्यादातर जगह गर्मी और उमस का असर रहा, कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखी गई। वहीं 12 में करीब 1.25 घंटा पानी बरसा। इस बीच जल संसाधन विभाग के अनुसार जुलाई महीने में सुस्त मानसून के कारण बांधों की पानी की आवक में कमी आई है। प्रदेश के कुल 693 छोटे बड़े बांधों में से 282 खाली हैं, जबकि 404 बांध आंशिक रूप से भरे हैं। इनका जलस्तर भी बीते कुछ दिनों में घटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को कल रवाना करेंगे। 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम अदालत में पेश करने को कहा। प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने के उद्देश्य से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कल से 5 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत की है। अभियान के दौरान जिले की सभी गर्भवती महिलाओं का 100% ANC पंजीकरण, 4 अनिवार्य प्रसव पूर्व जांचें, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान, एनीमिया की जांच तथा नियमित फॉलो अप किया जा रहा है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 104 स्वास्थ्य परामर्श सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा की जानकारी भी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। राजस्थान समान नागरिक संहिता यानी UCC के प्रारूप को लेकर प्रतापगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई रखी गई। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक बी आदित्य तथा जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की मौजूदगी में जन प्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और छात्र छात्राओं ने अपने सुझाव रखे। समिति के सदस्य बसंत सिंह छाबा ने कहा कि प्राप्त सुझावों का गहन विश्लेषण कर समावेशी और पारदर्शी प्रारूप तैयार किया जाएगा। जूनोसिस जागरूकता सप्ताह के तहत जिले के राजकीय GNM प्रशिक्षण

0: विद्यालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में रेबीज, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस जैसे पशुजन्य रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। विशेषज्ञों ने पशुओं के नियमित टीकाकरण, स्वच्छता और समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने पर जोर देते हुए आमजन से सतर्क रहने की अपील की। पिछले दिनों जिला प्रभारी सचिव और संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर तथा सुहागपुर पंचायत समिति के केसरपुरा गांव में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि और पीएम सूर्य घर योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र लोगों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में सहकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत आयोजित कृषक सम्मान दिवस में जिले के प्रगतिशील किसानों, पैक्स अध्यक्षों और समिति व्यवस्थापकों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने किसानों से ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, जैविक खेती, पुष्प उत्पादन और सौर ऊर्जा जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार जिले में लक्ष्मण रेखा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ANTF चौकी प्रतापगढ़ द्वारा नशा मुक्ति और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 475 विद्यार्थियों और नागरिकों ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत जिला कलेक्टर ने जिले में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न करवाई। योजना के माध्यम से 75 वरिष्ठ नागरिकों का हवाई यात्रा और 616 वरिष्ठ नागरिकों का रेल यात्रा के लिए चयन किया गया। जिले की सुहागपुरा तहसील के पंडावा गांव में नए 33/11 KV विद्युत ग्रिड सब स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इसके शुरू होने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिलेगी तथा प्रतापगढ़ विद्युत वृत्त में ऐसे सब स्टेशनों की संख्या बढ़कर अब 95 हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 जून से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से 5 साल से कम आयु के बच्चों में डायरिया, दस्त की रोकथाम, समय पर उपचार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार थीम के साथ आमजन को ORS, जिंक, स्वच्छ पेयजल और हाथों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन उचालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने काल रवाना करेला और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन ने वर्चुअल तरीका जनता ने सौंपन रो कार्यक्रम। राजस्थान हाई कोर्ट, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव रो कार्यक्रम 20 जुलाई ताई अदालत में पेश करण शुरू कहो। प्रवासियों री हिफाजत और भलाऊं जुड़िया मुद्दा माथे जयपुर में पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस रखी जी। और राज्य में घनखर ठोणा चौमासारी बिरखा आवता 3-4 दिन ताई मंदी रहवन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में हाइड्रोजन उचालन वाली पहली रेलगाड़ी ने काल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन रवाना करेला। आ गाड़ी जींद और सोनीपत पीछे चलेला। ये गाड़ी ने हाइड्रोजन गैस ने बिजली में बदलन वाली देशी तकनीक हाइड्रोजन फ्यूल सेल चलाई चावेला। ये तकनीक बिजली बनावन रे दौरान कार्बन बिल्कुल पैदा नहीं हुए है। आ रेलगाड़ी चलिया पाछे भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका सागे हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलावन वाला देशों री जमात में शामिल हो जावेला। प्रधानमंत्री रो काल ही पंजाब राज जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन देश भर रा और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करन रो कार्यक्रम है। आमाय

0: राज्यरा जैसलमेर बाड़मेर दौसा डीग गंगापुर सिटी गोटन खैरथल और सोमेसर ये शामिल है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन माथे रखा जावन वाला जलसा में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहवेला। जोधपुर रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव बतायो कि करीब 140 करोड़ रुपए रा खर्चू जैसलमेर स्टेशन माथे मुसाफिरा सारू नुआ सुविधा मुहैया कराई चिया है।
1: ये स्टेशन के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्फर्स है, उसकी कुछ चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम हमारे अवेलेबल है और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री है खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे वो ये जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एसी वेटिंग हॉल भी है जो बांसर हॉल से वो हेलिंग और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की सुविधा है। कितनी प्लेटफॉर्म में तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी।
0: राजस्थान हाईकोर्ट राज्य सरकारों पंचायत और निकाय चुनाव रो कार्यक्रम पेश करन रा हुकम दिना है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा री खंडपीठ आज सुनवाई रे दौरान राज्य सरकार और प्रदेश रा निर्वाचन आयोग ने चुनाव करावन री तारीख बतावन रा हुकम दिना। अदालत आरक्षण लॉटरी रो ब्यूरो और ओबीसी आयोग री रपट सौंपण री तारीख बतावन बाबती कहो। ध्यानजोग है कि हाईकोर्ट पहली 31 जुलाई तय चुनाव करावन रा हुकम दीना हा, पर ओबीसी आयोग री रपट माए मोड़ा रो हवालो देता थका सरकार री ओरू चुनाव करावन रो काम शुरू नी करी जियो। वकील प्रेमचंद देवंदा खबरनवीसा ने बतायो कि मामला री अगली सुनवाई 20 जुलाई ने फैला।
2: डिपार्टमेंट्स के लोकल बॉडीज के हैं, पंचायत के हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि वो ये बताएं कि लॉटरी की डेट क्या रहेगी रिजर्वेशन के लिए, और थर्ड जो है इलेक्शन कमिश्नर को और इनको स्टेट अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इलेक्शन की डेट बताएंगे। इसलिए 20 तारीख को मैटर की दोबारा सुनवाई होगी। 20 तारीख को ये तीनों डेट्स बताने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिए।
0: दूजिकानी पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जोधपुर में खबर नवीसा से आगे बातचीत करता था का कहो कि सरकार पंचायत चुनाव टेम सर करावनो तय किन्नो है।
3: ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास इसमें पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जिस तरह से कोर्ट का हम सम्मान करते हैं उसके जो निर्देश है उसका पालन भी करेंगे और जल्दी उसका समाधान सरकार की तरह से तैयार भी है।
0: इबीचे राज्य निर्वाचन आयोग रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा चुनाव री शुरुआती तैयारियां सारू जरूरी दिशा निर्देश जारी कीना है। वह जिला निर्वाचन अधिकारियां वोटर लिस्टा बनावण मतदान केंद्रा रो चयन रिटर्निंग अहलकारा री नियुक्ति और दूजी व्यवस्थावां करण सारू कहो। सुप्रीम कोर्ट सगला राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां ने बुजुर्ग और घना मंदा कैदियां री बगत तो पहली बेगी रिहाई रा बारा माय जरूरी नीति बनावण और लागू करण रा हुकम दीना है। अदालत देश माय एड़ा मामला माय विचार करण सारू एक सरीखो सिस्टम बनावण सारू नीति ने 3 महीना माय अधिसूचित करण रो हुकम ही दीनो। देश रा न्यारा न्यारा शहरा बीचे हवाई जहाज उ सफर रो सुबितो मुहैया करावन सारू चलाई जा रही उड़ान योजना री मियाद 10 साल ताई बधा देरी ची है। सरकार आवता 10 साल माय 109 हवाई अड्डा और हेलीकॉप्टर उतरण री 200 ठोणा विकसित करनो तय किन्नो है। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू आज नई दिल्ली माय उड़ान योजना रा बारा माय राखी जी कार्यशाला पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का आचार कारी दीनी। वे बतायो कि सरकार उड़ान योजना रा तेत हवाई जहाज चलावन वाली कंपनियां ने माली मदद देवन री मियादी 3 उबधार 5 साल करण रो फैसलो कीनो है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। जयपुर में आज पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस राखी जी। इनमें सुरक्षित और वैध प्रवासन न बधावो देवन, परदेश भेजन वाला फर्जी एजेंटाओं जनता न बचावन, प्रवासियां रा भला, कौशल विकास, सैर सपाटा और निवेश रबारा माय चर्चा करी जी। विदेश मंत्रालय माय सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और राज्य रा

0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ही ई सम्मेलन में शामिल थिया। खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका रंगनाथन कहो कि कॉन्फ्रेंस में प्रवासियों री हिफाजत और कल्याण जुड़िया मुद्दा माथ जाग जगावन री कोशिश करी जी।
1: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को, विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी, और जो भी उनको प्रॉब्लम्स है उनके सुझाव के।
0: जयपुर रा होम्योपैथी विश्वविद्यालय रो दीक्षांत समारोह आज राखी छियो। इनमाए राज्यपाल हरिभाव बागड़े और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव 760 विद्यार्थियों ने उपाधियां देर नवाजा। कार्यक्रम में चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा रा हलका में बेहतरीन काम करने वाला रो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देर मान करी जियो। जलसा में विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति कहो कि भारत में गुजरा जमाना हुई इलाज जुड़ी ज्ञान परंपरा रही है। वह होम्योपैथी ने इलाज रो कारगर तरीको बताता थका अनुसंधान रा आदर्श सागे आगे बढ़ावन री अरज कीनी। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कहो कि होम्योपैथी ने इलाज रा तरीका रा तौर आखी दुनिया में अपनाई ची है। वह नौजवानों बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करावण में योगदान देवण री अरज कीनी। जाधव कहो कि लाडला कुछ वर्षा में देश में जनता री स्वास्थ्य सेवाओं तई पहुंच तेजी बढ़ी है।
2: देश में भी आयुष शिक्षा का विस्तार हुआ है, आयुष चिकित्सा का ढांचा मजबूत हुआ है, अनुसंधान को नई गति मिली है और औषधियों के गुणवत्ता मानक भी सुदृढ़ हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुए हैं तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एकीकृत कृषि पद्धतियां ने बढ़ावो देवण माथे जोर तीनो है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR रा स्थापना दिवस समारोह में बोल रहा है। चौहान कहो कि किसाना और वैज्ञानिका री मेहनतों खेती बाड़ी रा हलका में चोखा नतीजा मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ICAR री कोशिशा री सराहना करता थका कहो कि वैज्ञानिका ने किसाना री जरूरत रे मुताबिक अनुसंधान करनो चाहिए। वह कहो कि देश 376 करोड़ टन खाद्यान्न री उपज रो रिकॉर्ड बनायो है। श्री चौहान बतायो कि लारला साल न्यारी न्यारी साखा री 386 नई किस्मा विकसित करी ची।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: अरब मौसम राज्य में आवता 3-4 दिन ताई बिरखा रो दौर मंदो रहवन रा आसार है। हालांकि प्रदेश रा उगनी हल्का माए कठे कठे बरसात फेवन री संभावना है। मौसम विभाग कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग माए कठे कठे में बरसवारा आसार जताया है। ई बीचे आज घनखर थोड़ा गर्मी और उमस रही। दूजिकानी 12 माए करीब 1.5 घंटा ताई पानी बरसियो। कम बिरखा रे कारण बंधा माए पानी री आवा की थोड़ी कम भी है। राज्य रा 693 छोटा मोटा बंधा मायो 282 रीता है, जदका 404 बंधा थोड़ा घना भरिया है, जहां माए लारला दिना पानी रो लेवल उतरियो है। करौली जिला माए 5 बंधाओं पानी री निकासी रा सिस्टम री आज तकनीकी जांच करी ची। इन दौरान कमांड हलकारी नहरा माए पानी छोड़ने वाला दरूजा री जांच करी जी और गैर कमांड हलका सारू बनाई जी लिफ्ट प्रणाली रोई कामयाबी सागे ट्रायल करी जियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। इसारू आप ई सुझाव मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 24 जुलाई ताई भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: हाइड्रोजन उचालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने काल रवाना करेला और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन ने वर्चुअल तरीका जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। राजस्थान हाई कोर्ट पंचायत और निकाय चुनाव रे बारा में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जुलाई ताई पंचायत चुनाव रो कार्यक्रम अदालत में पेश करण सारू कहो। प्रवासियों की हिफाजत और भलाऊ जुड़िया मुद्दा माथे जयपुर में पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस रखी थी और राज्य में घनखट होना चौमासा री बिरखा आवता 3-4 दिन ताई मंदी रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। जी हाँ, समय हो चला है कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं संदीप कुमार पारिक और मुक्ता जैन।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनिया सगला किसान भाई ने आपने भी मुक्ता जी
1: और संदीप भाई का घना घना राम राम।
0: संदीप भाई आपने भी मारे राम राम
2: राम राम राम राम मुक्ता बहन आपने भी राम राम।
0: और संदीप भाई देखो आपा देखा आ गया जी को आज रो जमानो एनी बहुत आगे बढ़ चुकी है और देखा तो कहनी दूर कोसो दूर बैठे यार आपा बने फोन सुबांगो चेहरो देखकर बात कर सका। और मारो मतलब कहना रो मतलब वो ये है कि जमानो इतो बढ़ गया है कि एआई आपा कवानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बिरो समय आ चुक्यो है और वो बहुत ही अपने किसान भाई वास्ते भी काफी फायदेमंद रही है।
2: बात तो बिल्कुल सच्ची है।
0: हाँ।
2: और बात यह है कि खाली किसान वास्ते क्यों
0: आज
2: की एआई आई आई आई है।
0: हाँ।
2: आप देखो हर चीज में आगी
0: आगी है, है? सही के।
2: और इंगो जो को फायदो है नी तो बात कदी भी करी जानी तो बात फायदे सुन चालू हुए।
0: हाँ।
2: क्योंकि आदमी की नियत हुए कि वो हर चीज में फायदो देखे।
0: सही
2: तो आज देखो यहाँ है कि जी आप अबार एक जिक्र करो कि तकनीक जकी है बा इतनी आगे बढ़ गई है कि चाहे अठू कोसो दूर कोई बैठे हुए पहले तो देखो बा भी एक तकनीक जब आप कोसो दूर बैठे खाली बात कर सकते
0: बात कर सकता है।
2: लेकिन अब यहाँ है कि आम समझ यहाँ बैठे बतला रहा
0: बतला फोटो बात देख कर
2: हाँ इन प्रकार की चीज होगी। अच्छा एक जमानो जब आप यहाँ देखता कि भाई कोई जरूरी समाचार हो तो नहीं तो तार भेजता टेलीग्राम
0: टेलीग्राम भेजता।
2: लेकिन अब वह जमाना चला गया तकनीकी कौन रही
0: तकनीकी
2: अब तो क्या है कि मिनट में फोन लगा लिया नहीं तो कोई मैसेज भेजनो मैसेज भेज लिया। अच्छा कि नहीं कि कागज भेजनो है कोई फार्म भरना है तो वो ही घर बैठे बैठे
0: बैठे भेज दे।
2: तो आज की तकनीक है इसको आराम बहुत हो और वो जो को आराम है देखो किसान का करने कभी हुई को नहीं पर अब धीरे धीरे धीरे धीरे किसान की जी की खेती बाड़ी है बी में भी एआई तकनीक जकी है वह बिना की राहत देने को काम कर रही
0: है। मैं मतलब बहुत सारी राहत को काम कर रही है कि जी हाँ वो किसान ने सही मौसम की जानकारी मिल जाए जिसको किसान समय पर बुवाई कर सके और फसल में जिका रोग लागे नहीं बेरी भी पहचान ये आई सू कर सके जिसो बिना नुकसान सू वो बच सके। और संदीप भाई इन्हें सगे सगे मिट्टी री जिकी जांच है नी भाई मिट्टी में किस किस तरह का पोषक तत्व तो है कम है ज़्यादा है पानी री कितनी आवश्यकता है वह सब भी किसान इसू पतो कर सके है। और इन अलावा जिकी आजकल की नई नई तकनीक यानी ड्रोन है सेंसर है भी इसू मदद लेर किसान अपनी खेती री निगरानी भी कर सके है।
2: बिल्कुल तो एक शब्द में जे मैं कहूँ मुक्ता बहन तो वो है कि बाज की क्या कह रहे हैं सम्राट स्मार्ट खेती। हाँ बाज की है बा असल में आई खेती है। अब जहाँ कह रहे हैं अभी पॉली हाउस लगाओ हाँ ग्रीन पॉली हाउस में क्या है कि आप एक बंद वातावरण के अंदर फसलां जिकी बदले वहाँ लेकिन वह फसलां की बढ़वार जिकी है वह किन प्रकार से हो रही है कौन सा पौधे में कितो पानी मिल रो है

0: पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तो संदीप भाई, अभी आप बहुत ही मीठो सो अनुराधा प्रकाश री आवाज में गीतड़लो सुनियो। और संदीप भाई, देखो आप बात कर रहा, आप अगली अपाणी जी की चर्चा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान रे बारे में। और ई योजना रो अपन का ही उद्देश्य है कि बरसात रो पानी बचाणो, भूजल स्तर बढ़ाणो और गावा ने पानी री दृष्टि सु आत्मनिर्भर बनाणो। मतलब कहना रो ये कि ई अभियान रे तहत गाँव गाँव में तालाब, जोहड़, एनीकेट, नाड़ी, खाड़ा और वर्षा जल संग्रहण रो जो काम है वो अपने करवाणो है। तीसू का ही है कि बरसात रो पानी जमीन में समावे और कुआ, ट्यूबवेल और बावड़ी है जिका पानी सू भर जावे।
4: बिल्कुल सही बात बताई आप। और देखो इन चीज री दरकार क्यों है, क्योंकि कह रहे कि पानी बिना सब सू जल है तो कल है। तो पानी जी की एक ऐसी चीज है जगह के बिना आप एक दिन को
3: नहीं रह सकते।
4: नहीं है कि दो दिन रोटी नहीं खावानी सर्जे भाई। कई लोग व्रत करे, रोजा भी करे है, लेकिन पानी बिना जो है वो को नहीं रहे जो है। और आई स्थिति की है कि धीरे धीरे आपने जमीन में जो पानी है वो कम होते जा रहे है। तो यहाँ सगड़ी चीजें ना ध्यान में रख के भी आप एक चीज या नारो आपने देखो गांव में भिंता पर लिखे हुए है कि भी खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। इन चीज के पीछे सोच चुकी बा है कि बरसात में जद भी चौमासो हुआ, जद भी पानी बरसे, बिरखा हुआ है, बरसात हुआ है, तो पानी की एक एक बूंद जिकी है
3: कीमती
4: बा कीमती है और बा बेकार नहीं जानी चाहिए। तो जी आप जिक्र करो कि आपने जगह पुराना कुआं है, बावड़ियां है, कुंड है नी, आ सगड़ा के कारनी दोबारा बारो जीर्णोद्धार करने की दरकार जरूरत है। अच्छा अभी सो हुए गो के इसको पहली बात तो एक तो आ चीज होएगी कि भूमिगत पानी को स्तर जो को है, जल स्तर जो को है वो दिनों दिन जो को कम होते तो जा रहे है। बिन अंग्रेजी में एक शब्द कह रहे मुताबिक रिचार्ज करना, पानी जो को है जमीन में आणु चालू हो जाए। और जब आणु चालू हो जाएगा नहीं तो जल स्तर ऊंचो उठागो, और जल स्तर ऊंचो उठागो तो पीने के पानी की समस्या भी दूर होगी और सागे सागे जी की सूखे की समस्या भी सुबी आपने निजात मिलेगी। तो कैंडो मतलब जिकी भी योजना बनाई जावे अंग पीछे बहुत लंबी सोच हुए, बहुत गहरो अनुसंधान खोज कर रही हुए। और इन वास्ते मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जिकी आपने राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और जी आप बात करी भी बिरखा को जो जल पानी है पीनो आप संरक्षण करा, भूजल स्तर में वृद्धि हुए और जल का जिका भी संसाधन है मांग लगातार आप विकास करी जाए। और सन 2016 में आ योजना जी की मुक्ता चालू करी जी। और आप जो को प्रदेश है मतलब जेठे सूखो ज्यादा है, हद क्षेत्र जो को है, बट पानी एक गंभीर समस्या है। तो इन समस्या ने ध्यान में रखता थकाई जन भागीदारी की पानी में भागीदारी बढ़े आ सोच रखे जल संरक्षण के लिए इन योजना में योजना ने बढ़ावा दी हुई।
3: और संदीप भाई, ई अभियान में सरकार है, ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संस्था और गांववारा लोग सब मिल भाग लेवे जिको अभी आप बात कह रहे हो जन से भागीदारी, तो ये अभियान ही सबसे बड़ी ताकत है। और मुख्यमंत्री जल स्वावलम जी की योजना है भी में उद्देश्य हो रही है कि पानी बचावनो है, पर्यावरण सुधारनो है और गांव ने समृद्ध बनानो है। और वो सफल है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: संदीप भाई, अभी आप बात करी खेती बाड़ी संबंधित, और अब देखो पशुपालन की थोड़ी बात कर ला। आपा देखा कि बकरी और भेड़ जी की यानी बा राजस्थान की ग्रामीण इलाका की आजीविका रो बहुत ही मोटो स्रोत होया करे। कम लागत, कम जगह और आसान देखभाल करन से वो धंधो गरीब है जिसका छोटा किसान है वे लाभ ले सके है, फायदो ले सके है। और बकरी रो जितो महत्व होया करे, यानी कि गरीब आदमी की गाय भी कहवा आपा भी ने, बकरी सु दूध, मांस, चमड़ो और भी

0: બકરી અર ભેડ જી એની બા રાજસ્થાન ની ગ્રામીણ ઇલાકા ની આજીવિકા રો બહુ મોટો શ્રોત હોયા કરે કમ લાગત કમ જગે અર આસાન દેખભાલ કરન છો ધંધો ગરીબ અર જીકા છોટા કિસાન ને બે લાભ લે સકે હે ફાયદો લે સકે હે ઓર બકરી રો જીતો મહત્વ હોયા કરે એની કે ગરીબ આદમી ની ગાય ભી કવા આપા ભી ને બકરી સુ દૂધ માંસ ચમડો ઓર ભી બહુ સારા જીકા ખાદ્ય પદાર્થ બે મિલે ઓર સાગે સાગે બકરી રો જીકો દૂધ હે વો પૌષ્ટિક હોય આપા ને અનેક તરહ ની બીમારીયા સુ ભી બચાવે હે ઓર બકરી જલ્દી જલ્દી બચ્ચા દે જીસુ આમદની ભી બઢે હે
1: બાત તો આપકી બિલકુલ સહી હે ઓર દેખો ગાંવ માં આપા વસા ની તો મુક્તા બેન ગાંવ મેં જગા રોજગાર કા સાધન હૈ બે ગિને ચુના હોય ઓર બામાં જ્યાદા આપણ લાગે કે ભી બઢવાર ગી ગુંજાઇશ કો લેકિન જગા પરંપરાગત આપણા કામ ધંધા હૈ બે આજ ભી બીતા હી ટિકાઉ હૈ જ્યાં બાર આપ ચર્ચા કરી કે બકરી ભેડ પાલન ચુકો હૈ ઓ ગાંવ મેં આય બઢાણા કો બહોત હી મહત્વપૂર્ણ और लाभकारी धंधो है क्यों क्योंकि देखो एक तो कम पूंजी लागे जिग्या कम चाहिए और कोई भी व्यवसाय या धंधो आपा करा नहीं मुक्ता बहन तो भी मैं सो बड़ी चीज है कि बिंगो जो को प्रबंधन है नहीं वो सरल होना चाहिए
0: सरल
1: अब ए तीनों चीजें जो की है वह भेड़ और बकरी पालन में आपा ने मिले भाई पहली बात तो पूंजी कम लागेगी जिज्ञा कम चाहिए और प्रबंधन जो को है वो भी बहुत सरल और आसान है। दूसरी बात और है कि खेती बाड़ी के सागे सागे बकरी और भेड़ पालन जब आप करा तो किसान ने साल भर अतिरिक्त आमदनी भी मिले और रोजगार का अवसर भी बढ़े और काम धंधो भी बढ़े है। अब जी आप एक बात करा भी आजकल की है कि थोड़ा सा पीसा हो या तो आपने फटफटी लिया या मोटर लिया या बोलेरो लिया कोई गाड़ी लिया है यार वो ही जो पीस हो आप पशुधन में लगाओ नहीं तो पशुधन बद्ध है आप मोटरसाइकिल लिया वो बड्डे थे ट्रैक्टर लिया है ठीक है खेती बाड़ी काम आवे पर ए जेका दूसरा साधन लिया नी बे बद्ध है कोनी अब एक चीज और बताऊं देखो मैं जिस बात करूं थे कहोगा मुक्ता बहन थे तो बिल्कुल ही पुराने जमाने की सी बात करो अब गाँव में क्या है कि पहली गांव में मुक्ता बहन देखा कि घर में सोनो ज्यादा हूं तो अब बित्तो को नहीं हुए तो हुए कटू अब तो मरुत लिया
0: रुपया पीसो ले लिया मोबाइल ले
1: लिया का चीजें ले तो ए वो ही पीसो इसी अणु चीज में आप लगा दिया जगह सू आपने अंग्रेजी में कहें रिटर्न को नहीं मिले तो बा फिर वो पीसो है जो को तो बर्बाद हो रही है
0: सही से
1: तो इन वास्ते आज भी आप जो भेड़ बकरी पालन भी कर रहे हाँ भी मैं पीसो लगा रहा हाँ पशु धंधा मैं लगा रहा हाँ तो वो अपनो धन बद्र है
0: संदीप भाई मैं हमेशा समझ रहे थे क्या चाहो कि इसी चीज पर जिका लोग लामता नहीं कि एक दो हो जाती है आजकल जिकी कही है कि दुकान लेवा को नहीं कीमत कम हो जाए तारी कहने की बात आई है तो
1: मैं देखो दुकान लेने की बात बताऊंगे मैं एक जिक्र भी करो मैं छोटो जद दादो जी के है कि चीनी की बोरी ले आता खांड की अब एक किलो थैली मिली है मेणी में गाल के अब मन तो कई बार यहां समझो को नहीं आवे मुक्ता बहन कि विकास आपा ज्यादा करो या अपना बुजुर्ग का करे
0: सही एकदम सही
1: तो कहने का मतलब आ है कि आपा गांव में रह रहे हाँ तो आज की तड़क भड़क है इन कहने नहीं देखा परंपरागत जिका काम धंधा है बाने ढंग से करा अपना जिका बेकार का खर्चा है वहां पर रोक लगावा और रोक लगाना के सागे सागे एक बचत की जिकी आदत है भी पर ध्यान देने की जरूरत है ऐसी चीजें आप कर लेने मुक्ता बहन तो आज भी आप मजो दोनों टाइम भगवान को नाम लेके रोटी खास कर
0: सही बात कही संदीप भाई और अब आप देखो बात करे यानी बकरी और भेड़ तो इन्हें कहीं किसान ने इसू आमदनी मिले बेरोजगारी घटे ग्रामीण रोजगार भी बढ़े और जिका ग्रामीण आप जो जवान भाई है वह भी शहर की तरफ व्यवसाय वास्ते को नहीं जावे बने मतलब गाँव में चोखा व्यवसाय मिल जाए तो और अपन घर ही जिकी महिला है वह भी व्यवसाय से आसानी से जुड़ सके है
1: भाई देखो घर को काम धंधो है नी तो घर में एक को है प्यार भाव बड़ा है अपना तो बड़ा है तो ऐ जिकी चीज है ऐ कदी खत्म होने वाली को नहीं तो ई पर थोड़ा सो ध्यान देने की जरूरत है वो कह के रहनी अपना हाथ जगन्नाथ खुद को आपा काम करानी खुद को काम धंधो टोरेडो है तो न तो कदी छुट्टी लेने की इच्छा हुए न सिर दुख है अरे भाई जिकी नौकरी चाकरी करनी हो तो न तो काम करने को मन करे अरे आए दिन मेरे तो यहाँ बीमारी होगी।

0: यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो आदमी बहाना ढूंढे। तो खुद को काम करो, खुद के काम में आप चार चीज खुद सीखांगा, चार जना ने रोजगार भी देंगा और घर जो को परिवार जो को है वो एक जगह
1: और आर्थिक सर्विस
0: बिल्कुल।
1: तो संदीप भाई जानकारी तो बहुत ही चोखी है, किसान भाई ने भी चोखी लाग की होती। अब आगे गीतर वापस सुन लेवा, सुना सा हो गीतर लोग।

0: ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों में सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वानुआतू जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं।
1: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: दो संदीप भाई गीतड़ लो सुनियो आपा और संदीप सा भी सुनिया। और संदीप भाई आपा देखा के आपा ने किसान जी का रात दिन मेहनत करे, परिश्रम करे, पसीनो बारो भी सम्मान होनो चाहिए। और इन सम्मान देवन वास्ते अपनी जी की सरकार है आपा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की नी। और इन योजना रो मुख्य उद्देश्य वही हो कि किसान ने अपने खेत वास्ते बीज, खाद, दवाई, सिंचाई और खेती राज्य का जरूरी सामान खरीदने बन ले सके, वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं पड़े, पहाड़ नहीं टूटे वहाँ पर। तो इन खातर बांगो बोझ कम खरन खातर सरकार बहुत ही चौकी योजना लाई, किसान सम्मान निधि योजना।
4: बिल्कुल, और जिद बात है सम्मान की, तो देखो मुक्ता बहन, सम्मान आपा ने इन डील को भी करना चाहिए। वो शरीर है नी, यदि मान सम्मान है, यदि प्रेम भाव है और यदि हर तरह का संबंध है, तो इन शरीर को अपन ध्यान रखा, जितो भी कर सका चेष्टा पहली आई होनी चाहिए कि शरीर को आपा ख्याल रखा। कह करे भी है कि पहला सुख निरोगी काया है। वो डील जत सावल है नी, रंग खेल तमाशा दुनियादारी जदी है,
3: सही, है?
4: तो कहना मतलब और ज्यादा की कौन करनो। देखो मुक्ता बहन, खान पान को थोड़ा अपन ध्यान रखा और दिनचर्या जी की है वह नियमित रखा। और दिनचर्या नियमित में एक काम सो पहली करा कि सगड़ा आपा घर में जितना भी हाँ सुबह जल्दी उठा, वह एक सुबह जल्दी उठो जो कहे नी पूरा दिन आपनों बना दे। और ई सु क्या है कि जिका छोटा टाबरी है बानने भी आप बाण पड़े, आदत पड़े भी सुबह उठनो कितो
3: जरूरी। अरे इन सगे सग संदीप भाई प्रकृति के जगह अपा खन रह सी तो कितना ही स्वस्थ रह सी।
4: बिल्कुल,
3: अपने जगह पांच तत्व बंग खन रहे तो अपा स्वस्थ रह सी।
4: बिल्कुल, तो ए देखो बाता करने को मनोरो तो और घणो ही करे कि क्योंकि देखो चौपाल में आवा नी जब एक अपनत हो है कि भी आपा बाया सू बहना सू बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि समय के साथ साथ होनी।
3: समय देखो संदीप भाई, समय अपन वक्त दिखा रहे, अपन अपनी घड़ी दिखा रही है स्टूडियो ही कि समय हो रहा पूरा और आगे लेवा वक्त आ गया। अपन किसान भाई बहन सो सीख लेवा, सीख दिलाओ सा अपने बहन मुक्ता जैन
4: और संदीप पारिक ने मोकला मोकला
3: राम राम।

यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे मुक्ता जैन और संदीप कुमार पारिक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं शाम के साथ।

सुगम संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं विजू शाह का संगीत, शब्द इंडिवर के, आवाजें पंकज उदास और साधना सरगम की। फिल्म का नाम मोहरा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:15 होने को है, अप्रस्तुत है। ओडिशा के पुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रेडियो रिपोर्ट कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो।

यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्वभर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पूरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहां वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के

पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। शिव मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रंग कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वही भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टहलिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब

0: बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़े बेसब्र से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडिचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं। हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखी है मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभी आप सुन रहे थे ओडिशा के पुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रेडियो रिपोर्ट हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल्स

रहे हैं। 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। कलाकार हैं अब्दुल शकूर सुलेमानी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष

0: मुख्य समाचार। भारत ने एक अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
3: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
4: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
5: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के

0: भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: जगबंधु है।
2: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
2: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज़ एट 9.

कार्यक्रम का आगाज आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज की आवाज के साथ, फिल्म का नाम मुद्दत।

संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलू मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। जी हाँ, ये गजल पेशे खिदमत है, गजलकार हैं ललित कुमार व्यास।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेल जगत राजस्थान दर्शन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राजस्थान दर्शन हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

श्रोताओं, राजस्थान का शेखावाटी अंचल अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान, समृद्ध लोक परंपराओं और जीवंत ग्रामीण जीवन के लिए जाना जाता है। झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में फैला यह क्षेत्र केवल अपनी भव्य हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति भी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा।

रेत के धोरों, रंग बिरंगे परिधानों और सदियों पुरानी रिवायतों से सजी शेखावाटी की संस्कृति आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है।

करें लोकगीतों की, तो शेखावाटी का लोक संगीत यहाँ के जनजीवन का आईना है। लोकगीतों में प्रेम, विरह, उत्सव, भक्ति और प्रकृति के विविध रंग दिखाई देते हैं। विवाह अवसरों पर गाए जाने वाले बन्ना बन्नी गीत, गणगौर और तीज के गीत, सावन के झूला गीत और फसल कटाई के अवसर पर गाए जाने वाले लोक गीत ग्रामीण जीवन को मधुरता से भर देते हैं। यहाँ की महिलाओं की सामूहिक स्वर लहरियाँ गांव की चौपालों और आंगनों में एक अलग ही वातावरण निर्मित करती है। केसरिया बालम और धरती धोरारी जैसे गीतों की लोकप्रियता ने शेखावाटी सहित पूरे राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। शेखावाटी के लोक नृत्य उत्सवों और सामाजिक आयोजनों की शोभा बढ़ाते हैं। घूमर, चरी, गेर और कच्ची घोड़ी नृत्य यहाँ विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य विशेष रूप से शेखावाटी की पहचान माना जाता है। इस नृत्य में कलाकार घोड़े की आकृति धारण कर वीरता और हास्य का अनूठा प्रदर्शन करते हैं। ढोल, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र इन नृत्यों की ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देते हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं जब घूमर नृत्य करती हैं, तो मानो रंगों का चक्रवात सा उत्पन्न

मरुस्थलीय प्रदेश होने के बावजूद शेखावाटी के लोगों ने अपने जीवन में रंगों का अद्भुत समावेश किया है। पुरुष पारंपरिक रूप से धोती, कुर्ता और रंग बिरंगी पगड़ी धारण करते हैं। यहाँ की पगड़ियाँ केवल वस्त्र नहीं बल्कि सम्मान और पहचान का प्रतीक मानी जाती हैं। महिलाएं घाघरा, कुर्ती और ओढ़नी पहनती हैं। गोटा पट्टी, कढ़ाई और शीशे के काम से सुसज्जित वस्त्र उनकी सुंदरता को और भी निखारते हैं। चांदी के आभूषणों का विशेष महत्व है। हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और गले में पारंपरिक हार ग्रामीण संस्कृति की पहचान है। शेखावाटी के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में लोक देवताओं का भी विशेष स्थान है। गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और भैरव जी जैसे लोक देवताओं की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। इन लोक देवताओं को जन रक्षक और लोक कल्याणकारी माना जाता है। गोगा जी के मेले और रामदेव जी के जागरण धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता के भी प्रतीक हैं। लोक देवताओं से जुड़ी कथाएं और भजन पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच प्रचलित हैं और समाज को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं।

शेखावाटी का ग्रामीण जीवन सादगी, सहयोग और सामुदायिक भावना का अनुपम उदाहरण है। गांवों में आज भी चौपालें सामाजिक संवाद का केंद्र बनी हुई हैं। किसान कृषि और पशुपालन को अपनी आजीविका का मुख्य आधार मानते हैं। जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जोहड़, तालाब, कुएं और बावड़ियां यहां के लोगों की दूरदर्शिता को दर्शाती हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद शेखावाटी के लोगों ने श्रम, धैर्य और सामूहिक प्रयासों से जीवन को समृद्ध बनाया है। ग्रामीण मेलों, तीज त्योहारों और पारंपरिक आयोजनों में पूरा गांव एक परिवार की तरह सहभागी बनता है। यही सामाजिक एकजुटता शेखावाटी की सबसे बड़ी ताकत है।

श्रोताओं, यद्यपि आधुनिकता और शहरीकरण के प्रभाव से लोक संस्कृति के अनेक स्वरूप प्रभावित हो रहे हैं, फिर भी शेखावाटी के लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। लोक कलाकार, साहित्यकार, सामाजिक संस्थाएं और युवा पीढ़ी लोक गीतों, लोक नृत्यों और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पर्यटन के बढ़ते महत्व ने भी शेखावाटी की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दी है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ की कला, संस्कृति और ग्रामीण जीवन को निकट से देखने आते हैं। शेखावाटी की लोक संस्कृति वास्तव में रेत, रंग और रिवायतों का अद्भुत संगम है। यहाँ के लोक गीतों में संवेदनाएं हैं, लोक नृत्यों में उत्साह है, वेशभूषा में रंगों की छटा है, लोक देवताओं में आस्था है और ग्रामीण जीवन में सामूहिकता की मिसाल है। यह संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि वर्तमान की जीवंत पहचान और भविष्य की अमूल्य विरासत भी है। शेखावाटी की यह सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करती रहेगी।

राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित शेखावाटी क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, रंग बिरंगी परंपराओं और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यहाँ का खान पान भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मरुस्थलीय जलवायु, सीमित जल संसाधन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ की भोजन संस्कृति को ऐसा स्वरूप दिया है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है। शेखावाटी का पारंपरिक भोजन स्थानीय कृषि, मौसम और जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ है। शेखावाटी में सदियों से ऐसा भोजन प्रचलित रहा है जो कम पानी में उगने वाली फसलों और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। बाजरा, मूंग, मोठ, चना, ग्वार और जौ यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न रहे हैं। ये अनाज न केवल पौष्टिक हैं, बल्कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और मौसम के अनुरूप स्वास्थ्य बनाए रखने में भी सहायक हैं। शेखावाटी के भोजन में बाजरे की रोटी का विशेष स्थान है। बाजरा फाइबर, आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सर्दियों में बाजरे की रोटी के साथ लहसुन की चटनी, छाछ या घी का सेवन शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करता है।

श्रोताओं, आज जब दुनिया मोटे अनाजों यानी मिलेट्स की ओर लौट रही है, तब शेखावाटी की यह पारंपरिक खाद्य संस्कृति आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुरूप सिद्ध हो रही है। मूंग और मोठ की दाल यहाँ के भोजन का अभिन्न हिस्सा है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करती है। दही से बनी कढ़ी भी यहाँ बड़े चाव से खाई जाती है, जो पाचन तंत्र के लिए लाभकारी मानी जाती है। गर्मी के मौसम में छाछ और मट्ठा शेखावाटी के लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। ये शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, पाचन को बेहतर बनाते हैं और निर्जलीकरण से भी बचाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन के साथ छाछ का सेवन आज भी सामान्य परंपरा है। शेखावाटी में उगने वाली केर, सांगरी, काचरी और ग्वारफली जैसी स्थानीय वनस्पतियां भोजन को विशेष स्वाद प्रदान करती हैं। इनमें अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये मरुस्थलीय परिस्थितियों में भी आसानी से उपलब्ध रहती हैं। श्रोताओं, पारंपरिक मिठाइयों की बात करें तो चूरमा, मालपुआ, रबड़ी, घेवर और मूंग दाल का हलवा शेखावाटी की लोकप्रिय मिठाइयां हैं। विशेष अवसरों और त्योहारों पर इनका विशेष महत्व होता है। हालांकि इनका सेवन संतुलित मात्रा में करना स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक भी माना जाता है। ग्रामीण शेखावाटी में कृषि और पशुपालन से जुड़े लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, इसीलिए पारंपरिक भोजन में पर्याप्त ऊर्जा देने वाले तत्व शामिल किए गए हैं। घी, दूध, दही और मोटे अनाजों का संतुलित उपयोग शरीर को लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। श्रोताओं, समय के साथ खान पान की आदतों में बदलाव आया है। फास्ट फूड, अधिक चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप

मोटापे जैसी समस्याएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगी हैं। ऐसे समय में शेखावाटी की पारंपरिक भोजन पद्धति हमें संतुलित और प्राकृतिक आहार का महत्व याद दिलाती है। शेखावाटी का खान पान केवल स्वाद का विषय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन शैली का एक समृद्ध दर्शन है। बाजरे की रोटी, दालें, छाछ, स्थानीय सब्जियां और पारंपरिक व्यंजन इस क्षेत्र की जीवन शक्ति का आधार रहे हैं। आधुनिक समय में भी यदि इन पारंपरिक खाद्य आदतों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाए तो स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। शेखावाटी की थाली में केवल भोजन नहीं बल्कि प्रकृति, परंपरा और स्वास्थ्य का सुंदर संगम परोसा जाता है। श्रोताओं, राजस्थान की धरती सदियों से वीरता, त्याग और बलिदान की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध रही है। इस वीर भूमि का एक महत्वपूर्ण अंचल है शेखावाटी, जिसमें न केवल कला, संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई बल्कि शौर्य और राष्ट्रभक्ति की ऐसी मिसालें भी प्रस्तुत की जिन पर संपूर्ण देश को गर्व है। झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में फैला शेखावाटी क्षेत्र आज भी वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है।

शेखावाटी का इतिहास संघर्ष और साहस की अनेक घटनाओं से भरा हुआ है। इस क्षेत्र का नाम शेखावत राजपूत शासकों के नाम पर पड़ा, जिन्होंने अपनी वीरता, कुशल नेतृत्व और स्वाभिमान के बल पर इस क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दिलाई। यहाँ के किलों, दुर्गों और ऐतिहासिक स्मारकों में आज भी उस गौरवशाली अतीत की झलक दिखाई देती है। राजस्थान की अन्य रियासतों की तरह शेखावाटी के लोगों ने भी अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। वीरता यहाँ केवल राजाओं और योद्धाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामान्य जनजीवन का भी अभिन्न अंग बन गई। यदि भारत में सैनिक परंपरा वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो शेखावाटी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। देश की सेना में इस क्षेत्र के हजारों जवान और अधिकारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लगभग हर गांव में ऐसे परिवार मिल जाते हैं जिनकी कई पीढ़ियां सेना से जुड़ी रही हैं। कहा जाता है कि शेखावाटी के अनेक गांवों में सैनिक बनना केवल एक रोजगार नहीं बल्कि गौरव और परंपरा का विषय माना जाता है। बचपन से ही युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और साहस के संस्कार विकसित किए जाते हैं। शेखावाटी ने देश को अनेक वीर सैनिक दिए हैं जिन्होंने युद्ध भूमि में अदम्य साहस का परिचय दिया। इस क्षेत्र के अनेक सैनिकों को वीरता पुरस्कारों

विशेष रूप से झुंझुनू जिले के सैनिकों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। यही कारण है कि झुंझुनू को कई बार भारत का सैनिक जिला भी कहा जाता है। यहाँ के सैनिकों ने स्वतंत्रता के बाद हुए लगभग सभी प्रमुख युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया है। सन 1999 के कारगिल युद्ध में शेखावाटी के अनेक वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके साहस और त्याग की कहानियां आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों के प्रति यहाँ के समाज में विशेष सम्मान का भाव दिखाई देता है। जब कोई जवान छुट्टी पर गांव लौटता है तो उसका स्वागत किसी नायक की तरह किया जाता है। वहीं शहीद सैनिकों की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ता है। शेखावाटी की शौर्य परंपरा केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यहाँ के लोक गीतों, लोक कथाओं और लोक नाट्यों में भी वीरता की झलक मिलती है। ग्रामीण महिलाएं अपने गीतों में वीर पुत्रों और रणबांकुरों का गुणगान करती हैं। लोक कथाओं में वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनाई जाती हैं, जिससे नई पीढ़ी को साहस, त्याग और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। गांवों के चौपालों पर आज भी युद्ध नायकों और शहीदों की कहानियां सुनाई जाती है। शेखावाटी की विशेषता यह है कि यहाँ वीरता और संस्कृति साथ साथ विकसित हुई है। एक और यहाँ भव्य हवेलियां, लोक कला और सांस्कृतिक धरोहरें हैं, तो दूसरी ओर देशभक्ति और बलिदान की गौरवशाली परंपरा भी है। यहाँ के लोक देवता गोगाजी और तेजाजी भी साहस, लोक कल्याण और रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन प्रसंग लोगों में निर्भयता और कर्तव्य निष्ठा का भाव

श्रोताओं, आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, तब शेखावाटी की शौर्य परंपरा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। यह परंपरा सिखाती है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और कठिन परिस्थितियों में भी साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए। शेखावाटी के सैनिकों का जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने में भी है। शेखावाटी की शौर्य परंपरा राजस्थान की गौरवशाली विरासत का अमूल्य अध्याय है। यहाँ की मिट्टी में वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के संस्कार रचे बसे हैं। इस क्षेत्र ने देश को ऐसे रणबांकुर दिए हैं जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम बनाया है। शेखावाटी की रेत केवल हवाओं के साथ नहीं उठती, यह अपने साथ वीरता, बलिदान और देशभक्ति की अनगिनत गाथाएं भी समेटे रहती हैं। श्रोताओं, रेत के कणों में इतिहास, रंगों में संस्कृति और रिवायतों में जीवन का दर्शन समेटे शेखावाटी वास्तव में राजस्थान की सांस्कृतिक आत्मा का एक उज्ज्वल स्वरूप।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थान दर्शन। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले किया गया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए। आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम और चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने

0: इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: जगबंधु हे गोसाई।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These